एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत सन 1948 के आश्विन मास की छहवीं तिथि तदनुसार 28 सितंबर सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकंड्स हो रहे हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका

0: पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन वार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 325। 6:45 पर संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से, गायक के जी गिंडे से बातचीत, प्रस्तुति है छाया गांगुली की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित होगा पार्श्व गायिका लता मंगेशकर पर, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 10 सुनिए पिटारा में उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 रंग तरंग कार्यक्रम, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 सुनिए सखी सहेली, 4 पिटारा में सुनिए सेहतनामा, PCOD IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन, 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए एक ही फिल्म से,

आज की फिल्म है विक्टोरिया नंबर 203। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी नई कमीज। लेखन है कुमुद नागर का, निर्देशन है चंद्रप्रभा भटनागर का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा रणबीर कपूर पर, प्रस्तुति शकील बख्शी की। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

आधी रात बीत चुकी है। शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। संजीवनी लेकर हनुमान अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री राम विलाप कर रहे हैं। हे भाई, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया। वन वन भटकते हुए शीत, घाम, वर्षा, आंधी सभी कष्ट सहे। अब तुम्हारे उस प्रेम को क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि एक दिन मुझे मेरे प्रिय भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन की मर्यादा को भी भुला देता। पुत्र, स्त्री, धन, घर परिवार, इस जगत में सब कुछ मिल जाते हैं। नहीं मिलता तो वो है सहोदर भाई। स्त्री के लिए ऐसे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? मुझे परम हितकारी जानकर माता ने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? श्री राम के कमल सरीखे नैनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ तो अद्वितीय और वियोग रहित हैं, किंतु अपने प्रिय भाई के लिए विलाप करते हुए मनुष्यों की दशा दिखा रहे हैं।

ये भी उनकी एक लीला है। तभी वहां संजीवनी लेकर हनुमान आ पहुंचते हैं। उधर अनेक उपाय करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसे सारी कथा सुना रहा है।

0: नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिणी की बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबको देश के जाने माने गायक कलाकार एवं राग संगीत के विद्वान पंडित केजी गिंडे, कृष्ण जी गिंडे से भेंट कराना चाहेंगे। नमस्कार पंडित जी।
2: नमस्कार
1: गिंडे जी। तो इस 60 साल की लंबी अवधि के कुछ अनोखे अनुभव संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करेंगे?
2: अवश्य।
1: आपका जन्म कर्नाटक में हुआ, आपके पिताजी डॉक्टर थे और परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने दूसरा व्यवसाय अपनाया, ऐसी स्थिति में केवल आपने संगीत क्षेत्र में प्रवेश क्यों और कैसे किया?
2: ये तो एक संयोग कहिए जी। मेरे बचपन में ही मेरे घर में संगीत का वातावरण रहा। मेरे पिताजी वैसे भजन कीर्तन करते ही थे, उसकी वजह से मेरे सबसे बड़े भाई जो सुविख्यात मेंदू यानी मस्तिष्क के तज्ञ न्यूरोसर्जन थे
1: जी जी,
2: उनके प्रोत्साहन से मुझे ये इस कला में अधिक रुचि हुई और मैंने नाट्य संगीत बहुत सुना और 5वें वर्ष में मैंने पहले संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
1: अच्छा।
2: उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब बंबई आए और पंडित भातखंडे जी के द्वारा मुझे गुरुवरी रतनजन गर्गे जी के पास
1: जी
2: मेरी आयु की 11 वर्ष से मुझे सौंपा गया।
1: यानी आपके बड़े भाई डॉक्टर
2: राम गिंडे
1: वो भी काफी संगीत
2: वो खुद भी गाते थे, हारमोनियम बजाते थे,

0: बजाते थे।
1: अच्छा।
0: सारंगी भी बजाते थे
1: जी,
0: लेकिन वो व्यवसाय से उन्होंने गाना बजाना नहीं किया। वैसे तो मेरे सब भाई गाय शास्त्रीय संगीत, जिसको रागदारी संगीत हम कहेंगे
1: जी,
0: उसमें काफी रुचि रखते हैं।
1: अच्छा।
0: और इस तरह से मैं लखनऊ भेजा गया और तब से करीब करीब 38 साल मैंने गुरुजी के पास रहा, वो तो आप जानते हैं,
1: पंडित
0: रत्नकर जी के पास।
1: जी हाँ। एक सवाल मैं करना चाहूंगा।
0: बोलिए।
1: जो कि आम तौर पे जिसको हम ले लिसनर कहते हैं, वो हमको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक अच्छा गायक बनना हो तो आप क्या राय देंगे?
0: अच्छे गायक बनने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा गुरु और पर्याप्त संगीत की साधना
1: जी,
0: ये सब सुविधा अगर हो तो मुझे विश्वास है कि अच्छा कलाकार अवश्य बन सकता है
1: जी।
0: लेकिन अच्छे गायन का प्रदर्शन सुनने का अवसर मिलना, इन सब बातों का होना आवश्यक है।
1: अच्छा। और एक सवाल है।
0: हाँ।
1: एक अच्छा राग संगीत का श्रोता बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
0: उसको जितना अधिक से अधिक वो रागदारी संगीत सुनता रहे तो अच्छा मार्मिक श्रोता अवश्य बन सकता है
1: जी, क्योंकि ये संगीत तो श्रवण विद्या है।
0: बराबर है।
1: जितना सुनेंगे,
0: ज्यादा सीखने से ज्यादा सुनना ये आवश्यक है। और मैं समझता हूँ ये संगीत सरिता कार्यक्रम उसमें एक दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: और उसमें से मुझे, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि एक सामान्य श्रोता भी इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी रुचि लेने लगा
1: सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो एक श्रोता बनने के लिए एक तो चीज हुई कि सुनना जरूरी है।
0: अवश्य।
1: किस टाइप का म्यूजिक सुनना पड़ेगा उसको?
0: पहले तो कंठ संगीत जरा हजम करना बहुत मुश्किल होता है
1: जी हाँ।
0: लेकिन इसलिए वो अगर वाद्य संगीत को सुने और तद अनुरूप अगर जो आजकल जिसको कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत या रागदारी संगीत के आधार पर जो फिल्मी संगीत आजकल कंपोज होता है, ये रचा जाता है, उसको भी अगर वो सुनता रहे तो कम से कम रागदारी संगीत के नजदीक आने लगता है
1: जी। अच्छा, आप जब संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे,
0: हाँ,
1: उस समय आप काफी रियाज करते होंगे?
0: मैं रियाज अवश्य करता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी करता था
1: जी।
0: रियाज जितना आवश्यक था उतना ही मैंने किया, लेकिन मुझे सबसे बड़ा सुयोग ये रहा कि मुझे अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का अवसर अवश्य मिला और उसका फायदा मुझे बहुत मिला।
1: और आपको तो मैंने देखा है कि काफी बड़े बड़े उस्तादों के पीछे भी आप गाए हैं।
0: हाँ, मुझे अवश्य सभी
1: लाभ मिला,
0: बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के पीछे मुझे गवाया है। बिल्कुल। खान साहब, फैयाज खान साहब, निसार हुसैन खान साहब, कई लोगों के पीछे मैंने गाया है।
1: तो मतलब ये है कि जैसे कि आजकल कहा जाता है घराने,
0: हाँ,
1: तो अलग अलग घरानों के गाने जो हैं,
0: हाँ,
1: और जो गवैये हैं,
0: हाँ,
1: उनका गाना सुनना और उनके साथ संगत करना,
0: हाँ,
1: इसका भी लाभ आपको प्राप्त
0: हुआ। अवश्य अवश्य। लेकिन उसमें एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि एक विद्या एक गुरु के पास सीखते हुए मेरा सुधार ऐसा रहा कि मुझे रत्नजनकर जी ने सभी गायकियों की बारीकियां समझाते हुए उन्होंने एक बुनियादी तालीम ऐसी दी कि जो मैं हर एक का गाना अनुकरण कर सकता था।
1: अच्छा।
0: ये उनकी शिक्षण की दिशा थी।
1: बिल्कुल।
0: और उसी वजह से मैं विभिन्न घरानों के गायकों के साथ भी गा सका।
1: जी हाँ। नहीं, एक अच्छी बात ये है,
0: हाँ,
1: कि रत्नजनकर जी,
0: हाँ,
1: एक कूप मंडूक वृत्ति के नहीं थे।
0: बराबर।
1: उन्होंने अपनी तो तालीम दी,
0: हाँ,
1: लेकिन हम लोगों का या आपका कहिए,
0: बराबर है,
1: कि दिमाग खोला।
0: बराबर।
1: इसके वजह से,
0: हाँ,
1: हम ये गाना अच्छा, ये घराना अच्छा, वो ठीक नहीं, ऐसा हम
0: हमारे गुरु जी आपको जानते ही हैं कि हर एक विद्यार्थी को अपने जो गुण है उसको विकास करवाते थे, अपना अनुकरण नहीं करवाते थे।
1: जी।
0: विद्यार्थियों में जो पोटेंशियलिटी है
1: जी,
0: उसी को वो आगे चलाना चाहते थे, उसी को विकास करवाना चाहते थे। और इसी वजह से उनके जितने शिष्य हैं वो सभी अपने अपने तई उन्होंने अपनी कला में विकास किया है।
1: क्या संगीत विषय को व्यवसाय की दृष्टि से लिया जा सकता है? जाहिर है कि सभी छोटी छोटी के कलाकार तो बन नहीं सकते।
0: हाँ।
1: तो ऐसे अभिलाषी व्यक्तियों के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
0: संगीत को व्यवसाय बनाना एक नसीब की बात होती है
1: जी।
0: जैसे आप खुद ने कहा है कि सभी कोई चोटी के कलाकार नहीं बन सकते।

0: लेकिन आजकल आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में भी संगीत चलता है।
1: हाँ, बराबर है।
0: तो सभी संगीत लेना चाहते हैं, व्यवसाय बनाना चाहते हैं।
1: व्यवसाय
0: अगर वो छोटी के कलाकार नहीं बन सकते हैं तो वो क्या बन सकते हैं?
1: वो शिक्षक बन सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: संगीत शिक्षक बन सकते हैं और संगीत का ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को उसका ज्ञान दे सकते हैं।
0: और आजकल क्रिटिक भी बनते हैं।
1: हाँ, बस यही, समीक्षक भी बनेंगे।
0: समीक्षक,
1: बराबर।
0: एक प्रश्न और पूछूंगा।
1: जरूर।
0: भारतीय राग संगीत जिसको शास्त्रीय संगीत कुछ लोग कहते हैं,
1: आजकल कहते हैं।
0: लेकिन राग संगीत कहना ही मेरे ख्याल से
1: अधिक पर्याप्त है।
0: इसका भवितव्य के बारे में आपकी क्या राय है आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए?
1: आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि शास्त्रीय संगीत गहराई से विकास होना चाहिए। शायद वो उसका स्वरूप कुछ और होने लगा है। और सामान्य श्रोताओं के, तब जन साधारण के लिए हम अगर संगीत करना चाहेंगे तो बराबरी के स्तर पर उसका विकास होगा, ना कि गहराई की ओर से। क्योंकि इसके लिए, एक साधना के लिए काफी ऐसे की जरूरत होती है।
0: अच्छा, तो गिंडे जी, प्रश्न तो काफी हैं। हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हम दोनों की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं।
1: ओर से भी और आपकी ओर से भी। मैं फिर से अपनी ओर से सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए थे सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिणी की बातचीत। ये बातचीत विविध भारती में वर्ष 1985 में संगीत सरिता के अंतर्गत प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। मित्रों, आइए सुनते हैं केजी गिंडी का गाया राग चारुकेशी।

FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 7 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपना दोस्त सावन कुमार लेकर हाजिर हूं आप सभी का अपना कार्यक्रम नमस्कार अलवर। साथियों, मैं बहुत अच्छे से हूं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे से होंगे, रेडियो प्रोग्राम्स का मजा ले रहे होंगे, अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और देखिए साथियों, एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। तो कार्यक्रम में आज क्या बातें करने वाले हैं, इस संबंध में थोड़ी बातें करते हैं। तो साथियों देखिए, आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में। विश्व नदी दिवस क्या है, किस तरीके से मनाना शुरू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों मनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, विश्व नदी दिवस जो है नदियों के संरक्षण, उनकी स्वच्छता और हमारे जीवन में उनके महत्व को रेखांकित करने वाला एक विश्व स्तर का आयोजन है। ये दिवस हर साल सेप्टेम्बर महीने के 4th रविवार को दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। अब देखिए, हम लोग बचपन से ही एक चीज सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है और आज तक सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मानते हैं कि यदि जल ही जीवन है तो यह भी मानना होगा कि नदियां इस जीवन की धमनियां हैं। जिस तरह से मानव शरीर में रक्तवाहिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है, उसी प्रकार से नदियां पृथ्वी के कोने कोने तक जल पहुंचाकर जीवन का संचार करती हैं। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, ये हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम इनके उदाहरण लेना चाहें तो आप देख सकते हैं, चाहे नील नदी देख लीजिए जो कि मिस्र में है, मेसोपोटामिया की दजला फरात नदी देख लीजिए, या फिर भारत की सिंधु नदी जिसके पास में सिंधु घाटी सभ्यता जन्मी, और गंगा नदी दुनिया की सबसे महान जो है, गंगा नदी जो है इन सब के किनारों पर दुनिया की सबसे महान संस्कृतियों का जन्म और पाषाण नदियों की गोद में हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आधुनिकता और औद्योगिकीकरण की दौड़ में मानव ने सभी नदियों को प्रदूषित किया, उनको संकट में डाला, और ये सब मानव ने किया जिन नदियों ने उसको जीवन दिया। उसी के साथ इसी पृष्ठभूमि में नदियों की सुरक्षा और उनके प्रति जागरूकता

के उद्देश्य से विश्व नदी दिवस को मनाया जाता है। यदि विश्व नदी दिवस की शुरुआत की बात करें तो इसका जो श्रेय है वो कनाडाई नदी संरक्षणवादी मार्क एंजेलो को जाता है। मार्क एंजेलो ने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक वैश्विक नदी दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस को मनाया जाना घोषित किया। पहला आधिकारिक विश्व नदी दिवस सन 2005 में मनाया गया। उस समय इसमें केवल कुछ देशों ने भाग लिया था, लेकिन आज दुनिया के 100 से अधिक देश जो हैं वो और उन देशों के लाखों लोग इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नदियों के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। तो साथियों, इस संबंध में और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत।

तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे विश्व नदी दिवस के अवसर पर उस चीज़ के बारे में कि विश्व नदी दिवस क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। तो साथियों, अब हमारे सामने जो चीज़ आती है वो ये आती है कि विश्व नदी दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो विश्व नदी दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव या फिर औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है और संकल्प का दिन है। इसके जो अगर हम प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि जन जागरूकता को बढ़ाया जाए, आम लोगों को ये समझाना कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं है बल्कि वो एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। दूसरे नंबर पर चीज आती है, वो आती है नदियों के खतरों से अवगत कराना, यानी कि प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन से नदियों को हो रहे नुकसान के प्रति सचेत करना लोगों को। तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है संरक्षण अभियानों को बढ़ावा देना, यानी कि नदियों की सफाई, तटीय वृक्षारोपण और जलीय जीवों के संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद चौथे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है सरकारों और नीति निर्माताओं पर थोड़ा दबाव बनाना, ताकि पर्यावरण अनुकूल नीतियां बनाने और औद्योगिक कचरे को नदियों में बहने से रोकने के लिए कड़े कानून जो हैं वो लागू करवाए जा सके। साथियों, जब हम देखते हैं कि मानव जीवन और मानव सभ्यता में नदियों का क्या महत्व है, तो हम ये पाते हैं कि नदियां केवल बहता हुआ पानी नहीं है बल्कि वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार भी है। पेयजल और दैनिक आवश्यकताएं हमारी पूर्ति होती हैं। दुनिया की एक बड़ी आबादी पीने के पानी और घरेलू कामों के लिए नदियों के पानी पर ही निर्भर रहती है। शहरों और गांवों में जलापूर्ति का प्राथमिक स्रोत नदियां ही होती है। भारत जैसे जो कृषि प्रधान देश हैं, उनके अंदर नदियां वरदान हैं। नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। नहरों के माध्यम से नदियों का जल जो है वो खेतों तक पहुंचता है, जिससे करोड़ों लोगों के लिए अन्न पैदा किया जाता है। वहीं हम आर्थिक और औद्योगिक महत्व को यदि देखते हैं तो नदियों के बहते पानी से बांध बनाकर बिजली को उत्पन्न किया जाता है, जो स्वच्छ ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जलमार्ग माल यात्रियों के परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे पर्यावरण अनुकूल माध्यम है। वहीं नदियां लाखों मछुआरों की आजीविका का साधन है, क्योंकि इसके द्वारा मत्स्य पालन जो है वो किया जाता है। वहीं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो भारत में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और एक सबसे अनूठी बात है पूरे विश्व में। हमारे यहाँ पर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियाँ केवल जल निकाय नहीं है बल्कि वो हमारी आस्था, परंपरा और त्योहारों का भी हिस्सा है। कुंभ मेले जैसे आयोजन नदियों के तट पर ही संपन्न किए जाते हैं। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र में जब हम नदियों की भूमिका को देखने की कोशिश करते हैं तो साथियों, हम पाते हैं कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी नदियों का जो योगदान है वो अतुलनीय रहा है। नदियां हजारों प्रकार की मछलियों, कछुओं, डॉल्फिन, पक्षियों और जलीय पौधों को आश्रय देती हैं, यानी कि जैव विविधता का घर है। वहीं नदियां बहते हुए भूमि के भीतर पानी का रिसाव करने में मदद करती हैं, जिससे भूजल स्तर का जो पुनर्भरण है वो लगातार होता रहता है। नदियां जमीन से पोषक तत्वों को समुद्र तक ले जाती हैं, जिससे समुद्री जीवन भी समृद्ध होता है। इसके अलावा नदियां आसपास के तापमान को नियंत्रित करने और वर्षा चक्र को संतुलित रखने में मदद करती हैं, इससे जलवायु का नियंत्रण होता है। तो साथियों, इन सब चीजों के बारे में और भी बातें करेंगे। आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

साथियों, इस म्यूजिक ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे विश्व नदी दिवस के विषय में। हम लोगों ने जाना कि नदियों का क्या क्या महत्व है, आध्यात्मिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में नदियों की क्या भूमिका है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि नदियों के सामने मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं, मुख्य खतरे क्या क्या हैं। तो देखिए, अगर हम देखते हैं तो दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख नदियां जो हैं वो किसी न किसी कारण से संकट से जूझ रही हैं। इन संकटों के जब मुख्य कारण को जानने का प्रयास किया जाता है तो हम पाते हैं कि सबसे पहले नंबर पर औद्योगिक कचरा और रसायन आ जाता है, यानी कि कारखानों से निकलने वाला जहरीला रसायन, भारी धातुएं जैसे कि सीसा और पारा ये, और इसके अलावा रासायनिक अपशिष्ट जो है वो बिना उपचार के नदियों में बहाया जाता है, इससे पानी जहरीला हो जाता है। वहीं घरेलू सीवेज और प्लास्टिक जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शहरों की घनी आबादी का गंदा पानी, शौचालयों की गंदगी और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा सीधे

नदियों में गिरता है। प्लास्टिक नदियों के प्रवाह को रोकता है और जलीय जीवों की मौत का कारण भी बनता है। इसके अलावा नदियों पर अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नदियों के प्राकृतिक मैदानों पर अवैध निर्माण, इमारतें और सड़कें बनाई जा रही हैं। इससे नदियों का दायरा सिकुड़ता जाता है और मानसून के दौरान भयंकर बाढ़ आ रही है। इसके अलावा बांधों का निर्माण और अविरल धारा में रुकावट, यानी कि जो बांध बिजली और सिंचाई के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक बांध बनाने से नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो रुक जाता है। नदी जगह जगह पर रुके हुए जलाशयों में बदल जाती है, जिससे उसका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो नष्ट होता है। इसके अलावा अब जो दूसरी चीज है वो है अत्यधिक बालू जो होती है, यानी कि रेत जो होती है, उसका खनन किया जाना। नदी के तल से अवैध रूप से रेत को निकालना नदी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे नदी का रास्ता बदल जाता है और वहां पर तटीय कटाव जो होता है वो बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय जैसे पर्वतों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे शुरुआत में तो नदियों में बाढ़ आ रही है, लेकिन भविष्य में नदियों के सूखने का गंभीर खतरा जो है वो भी मंडराने लगा है। नदियों के जो प्रदूषण है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये गीत।

तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे विश्व नदी दिवस के विषय में, और देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो अब जो अगली जो चीज़ है वो हमारे सामने आती है कि नदियों के प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जब नदियां प्रदूषित होती हैं, शुष्क होती हैं, तो इसका असर केवल प्रकृति पर नहीं बल्कि पूरे मानव समाज पर पड़ता है। स्वास्थ्य पर संकट होता है, दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं। वहीं गंगा के डॉल्फिन, मगरमच्छ और कई दुर्लभ प्रजातियों की जो मछलियों की प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। नदियों का पानी पीने योग्य न रहने से शुद्ध पेयजल का भारी संकट होता है। पर्यटन उद्योग, मत्स्य पालन और कृषि पर बुरा असर पड़ता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। भारत की प्रमुख नदियां और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में साथियों यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं और हम इस बात को पाते हैं कि नदियों का देश कहा जाता है हमारे देश भारत को, जहां 400 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले नंबर पर आती है हिमालयी नदियां और दूसरे नंबर पर आती है प्रायद्वीपीय नदियां। देखिए, गंगा, यमुना जो हैं ये, और इसके अलावा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं हिमालयी नदियां कही जाती हैं। ये नदियां वर्ष भर बहती हैं क्योंकि इन्हें ग्लेशियरों से पानी मिलता है। इसमें सबसे नंबर वन पर गंगा, उसके बाद यमुना और फिर सिंधु और ब्रह्मपुत्र आती हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। इन ये जो नदियां हैं मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। दक्षिण मध्य भारत की जीवन रेखा ये नदियां कही जाती हैं, लेकिन मानसूनी अनिश्चितता, जल विवादों और वनों की कटाई के कारण इन नदियों में जलस्तर का जो संकट है वो लगातार बढ़ रहा है। अब नदी संरक्षण के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों, जब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो हमारे भारत में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट, आपने सुना होगा, गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एकीकृत योजना जो है वो है। इसके तहत एसटीपी बनाना, घाटों का सुंदरीकरण और वनीकरण करना भी शामिल है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में आपने जाना होगा, इसके तहत देश की विभिन्न प्रदूषित नदियों के जल की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार ये प्रयास किए ही जा रहे हैं। नदी को जानो और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये चीज भी आप लोगों ने अवश्य सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो आज सुने। शहरों में नदियों के किनारों को व्यवस्थित करने और लोगों को नदियों से जोड़ने का प्रयास इसके थ्रू किया जाता है। साथियों, अब बात आती है कि हम नदियों को किस तरह से बचा सकते हैं, हमारे क्या क्या व्यक्तिगत योगदान हो सकते हैं, क्या क्या व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं। सरकार संस्थाएं तो नियम बनाती हैं, लेकिन जब आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो नदियां स्वच्छ नहीं हो पाएंगी। हम व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनको उठा सकते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का जो त्याग है उसको हम लोगों को करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसका आपको उपयोग बंद करना चाहिए ताकि नदियों तक ये न पहुंच पाए। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं जो हैं, जैसे कि हमारे उसकी वजह से जो नदियों में मूर्तियां, पूजन सामग्री, पॉलिथीन और राख बहने के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्प को चुनना चाहिए, उनके अंदर लगातार इन सब चीज़ों को हमें नहीं बहाना चाहिए। रसायनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, घरों में जैविक साबुन और डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। जितना पानी हम बचाएंगे साथियों, नदियों पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। इसके अलावा वृक्षारोपण भी एक ऐसी चीज़ है जो नदियों को वापस से रिजुविनेट करने में मदद कर सकती है और नदियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको कम करने में हमारे लिए बहुत योगदान कर सकती है। नदियों के तटों पर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और भूजल स्तर को बढ़ाती हैं। इसके अलावा जागरूकता फैलाना सबसे बड़ी चीज है अपने परिवार, मित्रों और समुदाय में। विश्व नदी दिवस के महत्व और नदी की स्वच्छता के विषय पर अवश्य चर्चा

करने चाहिए, क्योंकि साथियों नदियां केवल जल का जरिया नहीं है, वो हमारी पृथ्वी की जीवन रेखाएं हैं। यदि नदियां मरेंगी तो मानव सभ्यता का अंत भी निश्चित होगा। आज स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है और इसकी चिंता करना आवश्यक भी है। यदि हम अभी संभल जाएंगे तो देर नहीं हुई है, बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कहा जाता है कि देर आए तो दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। तो साथियों इन सब चीज़ों को अपने जीवन के अंदर अपना करके हम लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ, हम लोग इससे संबंधित प्रयास जितने भी हम कर सकते हैं वो सभी करेंगे। विश्व नदी दिवस हम लोगों को ये याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें जो धरोहर दी है उसे सुरक्षित बनाकर हम लोगों को रखना होगा, क्योंकि ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमें नदियों को केवल एक संसाधन के रूप में देखना अब बंद करना होगा और उन्हें एक जीवन संस्था के रूप में स्वीकार करना ही होगा। इस नदी दिवस पर आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि हम अपनी नदियों को प्रदूषित जो है वो नहीं करेंगे, उनको स्वच्छ रखेंगे, उन्हें अविरल बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कल बहती हुई नदी, निर्मल नदी और स्वच्छ नदियां विरासत में मिल सके। कल कल बहती निर्मल और स्वच्छ नदियां विरासत में हम लोगों को यदि मिल गई तो इससे बड़ी विरासत हम लोगों के लिए कोई हो नहीं सकती है। साथियों तो दोस्तों अब समय हो चला है कि आप सभी से विदा ले लें, क्योंकि घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही है कि आपसे ले विदा। तो जा रहे हैं इसी वादे के साथ में कि एक बार फिर से आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त सावन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार अलवर। अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत।

0: के शिल्पा राव और साथियों की आवाज में ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म बचना ए हसीनों से। शब्द रचना रही अन्विता दत्त गुप्तन की और संगीत से सवारने का काम किया विशाल शेखर ने।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। के सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज में शब्दृष्णा रही इरशाद कामिल की और संगीत से संवारने का काम किया प्रीतम ने। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला नगमा जो है वो आपको सुनवा रहे हैं के और साथियों की आवाज में फिल्म भूल भुलैया से। शब्दरचना है सईद कादरी की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

और साथियों, अब फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी नगमा सुनिए फिल्म दिल झोले से। आवाजें हैं अजय देवगन, पूर्णिमा और साथियों की, शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत से संवारने का काम किया है अनु मलिक ने।

आरजू झूठ है कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

तो साथियों, ये था आज का फिल्म संगीत। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अभी आपने सुना फिल्म संगीत। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ ही शोरों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत

0: 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
0: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
0: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को

0: श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 30 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की

भी नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृहमंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है।

0: सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, एसआईटी गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

आपने सुना सुगम संगीत FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी।
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताजा कर दी
2: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मान्य

0: राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं।
1: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
0: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं।
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की। और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
0: जी।
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
0: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया।

0: मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
1: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
0: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
1: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
0: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
1: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
0: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
2: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
0: उसने सोचा,
2: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
0: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
3: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
4: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है,
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक?
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।

0: अच्छा,
1: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे। हाँ, बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं,
3: अरे
2: क्या क्या मसला
1: है, ठीक है भगवान सब
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
4: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
2: शोक सूचना?
4: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
5: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
4: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
2: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
4: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
6: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
7: कैसे हमारे भाई?
2: बताओ तो
7: पापा जी कैसे हैं?
4: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
2: हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया, सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
7: कैसे समाचार?
4: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
5: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
8: अरे वो हमारा गौरव है,
6: हमारा गौरव है।
5: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
4: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
8: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
6: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
5: जब तक सूरज चांद रहेगा,
9: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
5: भारत माता की
9: जय,
5: भारत माता की
9: जय।
10: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
11: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
10: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
11: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
10: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
11: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया।

0: गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
1: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
2: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
3: जय हिंद धन सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
2: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
3: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
2: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
3: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
2: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने ना पाए।
3: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
2: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
3: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। जल्दी से जल्दी सहायता पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा, दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास, दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे।
6: हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
7: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
6: ए सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे।
3: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
5: जिंदा है। अरे बहुत खुशी है बेटा, जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर और खैरथल तिजारा जिले के दौरे पर रहेंगे, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को रेखांकित किया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। आकाशवाणी पर कल प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्र की रक्षा में समर्पित वीर जवानों को नमन करते हुए अपने संदेश में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम की ऐसी गौरव गाथा है जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने स्पष्ट किया। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का ऑपरेशनल फेज शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना और 7 मित्र देशों की वायुसेनाएं इस अभ्यास में उन्नत संयुक्त प्रशिक्षण और परिचालन सहयोग में हिस्सा ले रही हैं। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास का विषय साझेदारी में शक्ति है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं शामिल हुई हैं। अभ्यास में F-35, लाइटनिंग 2, राफेल, F-16, A-400M, MRTT, C-130, C-130J और KC-30A जैसे विमान हिस्सा ले रहे हैं। इनसे लड़ाकू अभियानों, हवाई परिवहन और हवा में ईंधन भरने जैसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। अन्य कई देश पर्यवेक्षक के रूप में भी अभ्यास में शामिल हैं। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है।

0: ये फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर कल रात IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। दो दिन चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य नीति विकसित करने पर मंथन होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ने देश के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। ये किसानों को एक आधुनिक डिजिटल और नीतिगत ढांचे के भीतर पारंपरिक और कम इनपुट वाली खेती का विकल्प प्रदान कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रासायनिक मुक्त इकोसिस्टम आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में शुरू किया गया था। इसके तहत विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाती है। देश भर में 70,000 से ज्यादा प्रशिक्षित कृषि सखियों को किसान मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 2 साल के लिए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। योजना के तहत राजस्थान में जुलाई 2026 तक 2,12,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। न्यूज डेस्क से माधुरी वशिष्ठ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर और खैरथल तिजारा जिलों के दौरे पर रहेंगे। वे भरतपुर के बयाना क्षेत्र के बिड़ियारी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री खैरथल तिजारा जिले में विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। उनका वहां भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान टूरिज्म क्रिएटर समिट 2026 आयोजित हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने आईफा अवार्ड्स और विभिन्न ट्रेवल इवेंट्स का उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी से पर्यटन को बढ़ावा देने में सफलता मिली है।
2: सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर जब कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। आपने आईफा अवार्ड्स देखा, बहुत सारे जो हमारे आयोजन होते हैं वो भी इनके साथ होते हैं। शेखावटी की भी एक पॉलिसी आ रही है बहुत जल्दी, तो जब हम लोग वहाँ कुछ करते हैं तो उनके साथ मिलकर करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनके साथ मिलकर करते हैं, तो एक आपसी सहयोग से बहुत अच्छी चीज बाहर आ सकती है।
0: प्रदेश में आज पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों के अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और सीकर में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग के अनुसार कल अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, वहीं प्रदेश में

0: सबसे अधिक तापमान फलौदी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा सेतु और आंगन मिलन सेवा के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पाली में सेवा सेतु शिविरों में कृषि, ऊर्जा, महिला और बाल विकास सहित 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बाड़मेर में आंगन मिलन सेवा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर और खैरथल तिजारा जिलों के दौरे पर रहेंगे, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला।

0: और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णा एस वत्स, ही इज मेंबर एंड HOD NDMA एंड श्री अमित प्रोथी, DG CDRI। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में कच्छ को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए, तो आप क्या हमें ये समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया।
2: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी। और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है

वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों की भी डेथ हुए थे, तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा

0: एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा।
1: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
2: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाए जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाए जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे,
1: नॉर्मल
2: लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेस आ रहे हैं साथ साथ में उसको अवॉइड कर सके। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे 3 चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हमको 3 सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उसे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
1: तो एक्सपेंसेस
2: को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष

0: व्यवस्था जीएसटी में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो जीएसटीएमए की स्थापना हुई। जीएसटीएमए की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया और फिर जीएसटीएमए का एक कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था। मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और एडीबी की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो और फिर जीएसडीएमए फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। जीएसडीएमए के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह भी संभव हुआ। और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वो काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया, किसी भी डिजास्टर किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लांट तरीका होता है, सीडीआरआई भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलिएंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
2: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से 5 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी। मतलब अगर आप आसपास देखो, एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में है, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सकें और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सकें ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट, और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं। उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीजें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूँ और मैं ठीक हूँ। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की, वो गया नहीं टेक्स्ट, और 1.5 घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सब

0: ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है राइट. तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना.
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए.
2: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था. नर्मदा में जो डैम बन रहा था तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था. तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था. और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था. तो उस समय मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था. तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था. तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना. तब मैं वहाँ था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया. फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफ़ी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ. आज बहुत सारी जगह क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है. तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया.
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम CDRI की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मॉनसून के सीजन में, उसमें CDRI का क्या रोल रहता है?
0: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम NDMA के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से. और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं तो उनको समझना आसान नहीं है. तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है. वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है. तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है. तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाए हमारे शहरों के लिए. अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है. कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की ज़रूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं. जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है. इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है. एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती, वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर. सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है. जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है जो

0: इस पर कि जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है और एनडीएमए के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा हम अभी पानी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे, तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशन हैं, और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशन भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
2: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल

0: 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है? आपकी यू नो एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत, तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी की भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है उसकी। जब भूकंप आता है वो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पर डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पर अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पर सोच अभी काफ़ी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफ़ी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी,
0: बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है, एक और चीज़ शुरू हो गई है वाइल्ड फायर अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा काफ़ी शहर में भी। तो ये सब चीज़ों में जनरली ज़्यादा टेंशन हो रहा है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 डिग्रीज वार्मर ग्लोबली में। पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल वो सबसे गर्म साल था, तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न भी चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियर बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट इस पर काम भी होने लग गया है काफ़ी।
1: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और सारे जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है। तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है, और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई
0: है? और मैं चाहूंगा कि कृष्ण जी भी इस पे आपकी तरह बात करें। हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे। ये ऑलरेडी है, G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे। इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राजील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को इस गर्व से मैं बोलूंगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें एस्टैब्लिश हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाय पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाय को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए, इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है। और सेंडाय का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पे किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पे हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
2: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है, एक तो जिसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है, अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी नियंत्रण हमने किया है। जो हमारे NDRF के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है जब भी कभी फॉरेस्ट फायर होता है, और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन एयरफोर्स, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूँगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज़्यादा हीट एक्शन प्लान्स है पूरे देश में, कई

0: शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं। करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहां हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाया है। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है। और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीज़ों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया। तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में, 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है। और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है। और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज़्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज़्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है, जो भी प्रकल्प बन रहे हैं उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएं। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है। तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी। तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में, सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी हम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें ताकि हम ना आपदाओं पर हमारा एक ना बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं। बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पे भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की मदद से साइकोसोशल काउंसलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहाँ हम गए थे और वहाँ लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था। और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज़्यादा कर सकें ताकि ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया, हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए भी हम प्रयत्न कर सकें।
2: हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं पर बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए, आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए। तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल से संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी

0: गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं करे जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में, या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए. सो उस पर अटेंशन हमने फोकस ज़्यादा किया है स्कूल्स पे. सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है. हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज़ उसको कर रहा है उसको भी इन चीज़ों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाए. सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसे आप ध्यान दें, कैसे इसमें आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए. सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं.
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए. बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक. आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी.
2: थैंक यू सो मच.
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक. इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044.

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 9:45 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

0: श्रोताओं, हमारे जीवन की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करने वाला कंठ है लता जी का। इस मंजुल स्वर में हमने कभी लोरी सुनी,
1: हीरे से आ जा रही अखियां में बिंदिया, आ जा रही आ जा, हीरे से आ जा,
0: तो कभी बचपन का गीत।

0: लता जी के संगीत सागर को इस कार्यक्रम की गागर में समेटना लगभग असंभव सा है। हमारे देश की पहचान है लता जी,
1: श्री कृष्ण के मुरली की तान है लता जी।

0: आलेख शोध और स्वर
1: मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
5: उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
6: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
5: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
6: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूं कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
5: अच्छा,
6: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
5: खुद ही गा रहे हैं?
6: खुद ही गा रहे हैं।
5: गाना कौन सा था?
6: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
5: जी।
6: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि

0: डाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून वून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
1: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
1: जी।
0: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा हा।
1: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
0: सारी उन्होंने वहां निकाली,
1: गजब की बात है। ये तो
0: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया, तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया,
1: खत्म हो गया।
0: नाउ ही इनटू म्यूजिक,
1: गजब की बात है ये।
0: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
1: हाँ,
0: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
1: हाँ,
0: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे वो।
1: बाप रे,
0: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की, कौन सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
1: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था, वो गाना यहाँ सुन ले।
0: हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।
1: क्या बात है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते, वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: दिल ढूंढता है गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: ही वाज सो ड्रंक कह दो या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट वांट एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन तमाम चीजों का गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना, दिल ढूंढता है अब ये सैड है
0: जी।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आपने सुना जग्गा जासूस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: एनिमल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर के बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन रामेश्वर का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती में कौन आ रहे हैं ये तो हमें आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये जवानी है दीवानी फिल्म का अगला गीत आपको सुनवाने वाले हैं बैनी दयाल, शेफाली अलविज इसका की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। और हाँ, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बैन दयाल और शेफाली की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बेनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे रॉकेट सिंह फिल्म से गीत, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अभिनेता रणबीर कपूर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में शेखर अस्तित्व के बोल आपने सुने। विक्रम मोंटोरसे ने इसे संगीत से सजाया। संजू फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल में अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत, तमाशा फिल्म के इस गीत में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ज्ञान भारतम मिशन के तहत आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पांडुलिपि डिजिटलीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। संस्कृति मंत्रालय की पहल पर राजस्थान में पहली बार इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल माध्यम से संरक्षित करना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई हैं। इसमें राजस्थान की प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और उन्हें डिजिटल स्वरूप प्रदान करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें संस्कृति और विरासत के विशेषज्ञों के साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। साथ ही मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्ट की प्रक्रिया

प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे पशुपालक अपनी परिचित भाषा में जानकारी और बीमा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे अबुधाबी में 15वीं संयुक्त राष्ट्र अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय कांग्रेस में शामिल होंगे। श्री मेघवाल संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय यानी UNODC के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। वे कल दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। श्री मेघवाल ने बताया कि अबुधाबी में UNODC की बैठकों के दौरान उनकी UAE के न्याय मंत्री अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवद अल नुआइमी से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। प्रदेश पुलिस ने बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। ADG साइबर क्राइम V.K. सिंह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को 25,000 महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। तकनीकी निगरानी के जरिए ऐसी सामग्री के प्रसार में इस्तेमाल हो रहे करीब 7,800 URL और प्रोफाइल तथा 100 डिवाइस ब्लॉक करवाए गए हैं। इसके अलावा 15,000 मोबाइल नंबर भी ब्लॉक करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी की जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेटेड चिल्ड्रन की रिपोर्ट और डिजिटल ट्रेल के विश्लेषण से संदिग्ध अकाउंट और मोबाइल नंबर चिन्हित किए जा रहे हैं। चूरू, नागौर, अलवर, खैरथल, तिजारा, सीकर, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से ऐसी सामग्री की सूचना देने की अपील की है। कोटा की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को एशिया बॉक्सिंग कमेटी का वाइस चेयरमैन चुना गया है। वे इस पद पर चुनी जाने वाली भारत की पहली और सबसे कम उम्र की एथलीट हैं। उनकी एकमात्र प्रतिद्वंदी कजाकिस्तान की करीना इब्राहिमोवा के नाम वापस लेने के बाद अरुंधति को सर्वसम्मति से चुना गया। एशिया बॉक्सिंग कमेटी में खिलाड़ी ही पदाधिकारी होते हैं और प्रतियोगिताओं तथा खिलाड़ियों से जुड़े फैसलों में भूमिका निभाते हैं। अरुंधति आज जापान में पद की शपथ लेंगी। बीकानेर के गांधी पार्क में मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए फोन डाउन पेज अप साइलेंट रीडिंग सेशन आयोजित हुआ। इसमें जिला कलेक्टर निशांत जैन और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित प्रशासनिक अधिकारी, शहरवासी और जैन जी के युवाओं ने हिस्सा लिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बीकानेर पाठकों और लेखकों का शहर है। उन्होंने कहा कि आज की जीवन शैली में लोग मोबाइल फोन में अधिक व्यस्त रहते हैं, ऐसे में यहाँ आयोजित रीडिंग सेशन एक अनूठी पहल है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, फिल्म का नाम सही पहचाना, यही हमारे सवाल का जवाब था। और हमारे साथी लता मंगेशकर जी के लिए बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं अपने मन से। हमारी एक साथी कहती कि जो अमर स्वर लता है कहलाती, उस लता दीदी की आज जन्म जयंती। उस सुरीला सफर के गीतों भरी संस्कृति कह रही है ज्योति से सुरदीप्ति की भावभीनी आरती। हमारी ओर से लता जी को विनम्र नमन, श्रद्धा सुमन। तो इस तरह से बहुत से हमारे जो साथी हैं वो लता मंगेशकर की आवाज से जिस तरह से जुड़ते हैं उनको वो हमें बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता जी के एक साक्षात्कार में सुनी थी कि कैसे वे गायिका उमा देवी के साथ रिकॉर्डिंग के समय माइक पर पहुंचने के लिए स्टूल पर खड़ी होकर गाती थी और उमा जी के जरा सा स्पर्श से वे स्टूल से गिर पड़ी थी। और जैसा कि उन्होंने कहा, आज भी वो समय याद आता है तो उन्हें बेहद हंसी आती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले ही हमारे घर में रोजाना विविध भारती सुनने का माहौल था और जब से मैंने होश संभाला लता दीदी की आवाज में विविध भारती पर उनके सुरीले गीत सुनते रहे हैं और विविध भारती सुनने का शौक आज तक बरकरार है। और हम कहेंगे कि फिर लता जी की आवाज भी रोजाना सुनने का ये सिलसिला भी बरकरार हुआ, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा तो नहीं जाता जब उनकी आवाज में एक भी गीत आपने न सुना हो, बल्कि कई गीत आप जरूर सुनते हैं रोजाना उनकी आवाज में।

हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत की अमर स्वर कोकिला थी। उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ। उन्होंने हिंदी के साथ अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी आवाज दी। उनके स्वर में प्रेम, विरह, भक्ति, संवेदना के अलग अलग रंग सुनाई देते थे। संगीत की दुनिया में उनका योगदान अद्वितीय है और उनकी आवाज भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बनकर हमेशा गूंजती रहेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन लता मंगेशकर से जो आपकी यादें या भाव जुड़े हैं वो तो आप हमसे साझा कर रहे हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप उनसे मिल पाते तो एक लाइन में या एक पंक्ति में बताइए कि क्या कहते हैं उनसे। ये आपको हमें बताना है कमेंट्स के जरिए। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप पहुंच सकते हैं इस पेज पर। और अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखिए, ब्लू टिक वाला ये जो पेज आपके सामने खुलेगा वहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और यहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि अगर आपको मौका मिलता लता मंगेशकर से मिलने का तो एक पंक्ति में आप उन्हें क्या कहते, क्योंकि इतना ही मिलने का मौका मिलता ना। और एक बात आप हमें बता सकते हैं कि आवाज के अलावा लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रभावित करती है। और आवाज की बातें तो हम कर ही रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं इस बारे में कि लता मंगेशकर जी की संगीत यात्रा पर कुछ लिखना मानो सूरज को उसकी रोशनी का परिचय देने जैसा है। उनकी आवाज सिर्फ गीतों में नहीं करोड़ों दिलों की धड़कनों में बसी है। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन उनके सुर आज भी वही अपनापन, वही सुकून, वही भावनाएं जगाते हैं। उनका नाम भारतीय संगीत के उस उजले अध्याय की तरह है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तो चलिए उसी आवाज में सुनते हैं ये गीत और आपको बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की लघु कथा सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि उस अदम्य मानवीय भावना का दस्तावेज है जो कल्पना के सहारे अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाती है और जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। ये जीवन की उस निरंतर यात्रा का प्रतीक है जहाँ इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहता है। तो हमारे साथियों से हमने पूछा था कि अगर आपको लता मंगेशकर से एक बार मिलने का मौका मिलता तो आप उन्हें क्या कहते, एक पंक्ति में हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से अगर मैं मिल पाता तो कहता कि सरस्वती माता के साक्षात दर्शन तो मैंने नहीं किए परंतु आपसे मिलकर और देखकर मेरे सरस्वती माँ के दर्शन मुझे सरस्वती माँ के दर्शन हो गए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी के गीतों को सुनते ही बड़े हुए, जवान हुए और अब बुजुर्गों में भी आ गए। लता दी के गीतों से सुबह होती है और रात भी वैसे ही होती है। उनके जाने के बाद भी हर रोज उनके गीत बड़ी शिद्दत से बजते हैं, उनकी कमी नहीं खलती क्योंकि उनको कभी देखा ही नहीं, वैसे ही आज हम उनके गीत सुनते हैं। ये कहा जा सकता है कि कलाकार अपनी कला के जरिए अमर होता है और इसी तरह से उनकी आवाज हमारे साथ बनी हुई है और बनी रहेगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से मिलते तो बस उनको देखते रह जाते और सिर्फ उनके चरण स्पर्श कर लेते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मुझे मिलने का अवसर मिलता तो शायद ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने शब्दों की नहीं सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती और मेरी श्रद्धा का सबसे सच्चा शब्द होता धन्यवाद लता जी। कितनी खूबसूरती से आपने अपने भावों को बयान किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर हमें मिलने मिलता तो हम कुछ नहीं कहते, केवल उन्हें नमन कहते क्योंकि कुछ कह ही नहीं पाते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस इबारत की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के अमर गीतों और धुनों को किसी जीवित एहसास की तरह बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। आजारी परदेसी से लेकर प्यार किया तो डरना क्या तक के बोल महज पंक्तियां नहीं बल्कि दो प्रेमियों के बीच संवाद और भावनाओं की धड़कन बन जाते हैं। आवाज की तलाश को संगीत की एक ऐसी रूमानी यात्रा यहाँ बनाया गया है जहाँ कल्पना और पुरानी यादें मिलकर एक जादुई और नॉस्टैल्जिक माहौल रच देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की इबारत के शब्दों में लता दीदी के इतने सारे गीत बन रहे हैं कि लिस्ट बनाते बनाते हम थक जाएंगे, इसलिए मन में ही सोच लिया है कि सारा गीत और पहला गीत ही हमारे मन का हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम इस तरह से जब खुद को समर्पित कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे मन की हो जाती है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज सिर्फ गीत नहीं थी, एक एहसास थी जिसने पीढ़ियों के दिलों को छुआ और भारतीय संगीत को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। आज भी उनकी मधुर आवाज हमारे दिलों में उतनी ही जिंदा है और हमेशा गूंजती रहेगी। लता जी को सादर नमन। और भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है लेकिन जिस आवाज की हम बात कर रहे हैं अगर उसका साथ हमें कार्यक्रम में मिलता

मधुमती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलने का मौका मुझे मिलता, मैं तो हल्का बीकानेर होकर देखती रहती, मेरे मुंह से शायद ही कोई शब्द निकलते, बस यही सोचती कि साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन करें, इतना साधारण व्यक्तित्व और इतनी अद्भुत कला। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि लता जी को एक बार जयपुर आने का प्रोग्राम था, एयरपोर्ट पर मेरे पति की ड्यूटी थी, जब पता चला कि लता जी आ रही हैं तो इन्होंने हमें भी घर से बुला लिया, तब साक्षात सुर साम्राज्ञी के दर्शन हुए, उनकी वो मुस्कान आज भी याद है। तो भाई कुछ चुनिंदा जो ऐसे लोग हैं जो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें देखा, इनमें आपका भी नाम शामिल है। हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा इन्होंने अपना एक संदेश भेजा है जिसको हम छोटा करके बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विविध भारती एक है, एक विविध भारती एक ही लता मंगेशकर। आएगा आने वाला गीत से हिट हुई लता मंगेशकर का लगभग हर गीत अनमोल है, इसलिए 6 दशकों से अधिक के लंबे सुरीले सफर में कई पीढ़ियां इनकी दीवानी रही हैं। हम स्त्रियों के सुख दुख के हर क्षण के गीत हैं इनके गीत कोश में, शायद इसलिए लता जी के बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाना आकाश से तारे तोड़कर लाने के समान है, सब एक से बढ़कर एक। और आगे इन्होंने कई गीतों के बारे में बात की है और उससे संबंधित बातें लिखी हैं। हालांकि बहुत से साथियों के कमेंट हैं इसलिए हम इनके कमेंट पूरा नहीं पढ़ रहे। हमारे एक साथी कह रहे कि आज की भारत में जैसे लता जी की जादुई आवाज ने गीतों के मोतियों को एक धागे में पिरो दिया हो। उनकी स्वर यात्रा में प्रेम है, विरह है, शरारत है, इंतजार है और जिंदगी के अनगिनत

रंग भी है। उनकी आवाज की मिठास और सादगी ने पीढ़ियों को संगीत से जोड़ा और हिंदी फिल्म संगीत को एक अमिट पहचान दी। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी हमारे साथी ने। और कह रही है हमारे साथी कि आज सुबह से खूबसूरत गीतों का इंतजार रहेगा, सुबह से रात तक रेडियो पर एक ही आवाज गूंजती है, स्वर कोकिला लता जी संगीत का पर्याय है, वो कोई भी गीत गाए मन मोह लेता है। विविध भारती पर कई गीत पहली बार सुने और बेहद ही पसंद आए, लता जी को सादर नमन। एक और साथी कह रहे हैं कि आज हम सबकी सरस्वती माँ की याद का दिन है, हमारे देश का गौरव आन बान और शान है लता जी, उनके गाए हुए गीत हमारी विरासत है, आज जो भी गीत सुनवाएंगे बड़े ही प्यारे लगेंगे। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज के गद्यांश में एक बात जो इशारा कर रही है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में लता जी के स्वर से आज की गीतों की महफिल रोशन होगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गायकी के पटल पर लता जी का नाम एक अलग ही अक्षर की तरह लिखा गया है। वे सिर्फ लता जी नहीं बल्कि सरस्वती हैं। हम उन्हें गायन की देवी की तरह पुकारते आए हैं, वे हर भारतीय के मन में गहरे तक बैठी हैं। सुबह से लेकर रात तक उनके गाए न जाने कितने गीतों से हम रोज समृद्ध होते हैं, फिर भी मन नहीं भरता। हम अक्सर किसी सुंदर जमीन से छत तक फैली हुई किसी बेल को लता कहकर पुकारते हैं, वे भी बेल की तरह इस जमीन से आसमान तक हम सबके हृदय पर विराजमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के लंबे इंतजार के बाद एक ही गाना याद आ रहा है कि तुम संग नेह लगाकर हार गई सजना। कोकिल कंठी सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता जी स्वयं सुर साध्वी साधना रत्न स्वयं सरस्वती की साक्षात मूर्त के रूप में अविरत हो अंतर ध्यान हो गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज बेटी के रूप में लता जी इस दुनिया में आई थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा की संगीत यात्रा में लता जी नाम मां शारदा की तरह वंदनीय है। हर आयु वर्ग में जीवन की हर परिस्थिति में उनके गीत अपने से लगते हैं। बचपन के लिए लोरियां, युवा काल के लिए प्रेम गीत, विरह गीत और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले गीत, जिंदगी के विविध रंगों को लता जी ने अपनी देवी आवाज से एक रंगोली की तरह सजा दिया है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही तो भाई एक गीत तो सुनना बनता ही है। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत किसने लिखा।

0: परख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गीतों से सजी है ये हमारा ये कार्यक्रम। और हमारे साथी कह रहे कि अगर मैं लता जी से मिलता तो सिर्फ एक ही गाना गाने का अनुरोध करता, ए दिले नादान फ्रॉम रजिया सुल्तान, वही हमारे रजिया सुल्ताना फिल्म। और हमारे एक साथी कह रहे मधुमति फिल्म का नाम पूछना यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों से दो का पहाड़ा पूछना, पर कभी कभी अच्छा लगता है ना मैट्रिक के विद्यार्थियों को भी दो का पहाड़ा बताना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजा रे परदेसी ये गाना मेरे पापा जब काम पर चले जाते थे तो हमारी माँ ये गाना गाकर मेरे पापा को याद किया करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना केवल गाना नहीं बल्कि लता मंगेशकर, सलील चौधरी और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति द्वारा रचा गया संगीत का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। गीतों में एक अलौकिक रहस्य और तड़प है। लता जी ने अपनी आवाज में जो पुकार और कंपन पैदा किया सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। आजादी के बाद जो आलाप और गूंज है वो पहाड़ियों में भटकती एक आत्मा की व्याकुलता को पूरी तरह जीवंत कर देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत चुनने में आपको भी मुश्किल होगी लेकिन काफी बेहतरीन गीत आपने इसमें शामिल किए हैं। भाई जब शख्सियत ऐसी होगी सामने तो गीत चुनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पल केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को छूने जैसा होता जिसने 7 दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी आवाज से बांधे रखा। हम शायद भावुक हो जाते, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते और हम बस उन्हें सम्मान से प्रणाम करना चाहते, नतमस्तक होते। खुशी के आंसुओं से आंखें धुंधला जाती और उनकी धुंधली तस्वीर जीवन भर के लिए हृदय में बसाए आ जाते। कितना अच्छी तरह से आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। और हमने हालांकि बहुत से गीत तो शामिल कर दिए हैं भारत में लेकिन सारे गीत सुनवाना तो संभव नहीं है, और भी इतने सारे गीत हैं, सबकी पसंद अलग अलग, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीतकार का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज, साथ में मोहम्मद रफी की आवाज में ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोशन का संगीत, साहिल लुधियानवी के बोल, सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के मौके पर लता जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो केवल एक नाम नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के जज्बात का नाम है। हिंदुस्तान की आवाज है। लता जी का पूरा जीवन ही संगीत की साधना और संगीत से अटूट मोहब्बत का अफसाना रहा है। उन्होंने जब भी गाया है तब ऐसा लगा ही नहीं कि शब्द है बल्कि भावनाएं बह रही हों, ऐसा ही लगा। प्यार की कशिश हो, जादुई जुदाई का दर्द हो, देशभक्ति का जज्बा हो या भक्ति का सुकून, उनकी आवाज हर इंसान के दिल का आईना बन गई। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन जब भी कोई झुमका हवा में गिरेगा, जब भी कोई परदेसी पुकारेगा या जब भी कोई दिल कहेगा कि प्यार किया तो डरना क्या, तब तब मुस्कुराती हुई लता दीदी हमारे साथ होंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में जो सुरीले गीत हैं, कई सुरीले गीत होंगे और उनने सारे गीतों के नाम लिखे हैं जो कि शामिल भी हो रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़कर लगा कि जैसे गीतों ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी कह दी हो। एक आवाज से शुरू हुआ सफर तलाश में बदल गया और फिर वही तलाश दिल की मंजिल बन गई। सच है कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं आती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वर की देवी और कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी के गाने किसी भी भाषा में हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि स्वर किसी भाषा से बंधा नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि विविध भारती से हमें लता मंगेशकर जी का कोई गीत सुनने ना मिला हो। और उन्होंने कहा आगे सत सत नमन। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी कोई आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में अपना घर बना लेती है। फिर वो इंसान उस आवाज के पीछे पीछे यादों, गीतों और एहसासों की गलियों में भटकता रहता है। आज की इबारत भी ऐसी एक तलाश की कहानी है जहां हर मोड़ पर एक गीत मिलता है, हर गीत में एक एहसास और हर एहसास में लता जी की मधुर आवाज की छाया। यही तो संगीत का जादू है कि बरसों बाद भी कोई धुन सुनते ही दिल उसी पुराने सफर पर निकल पड़ता है जहां प्यार भी है, इंतजार भी और यादों की हल्की सी कसक भी। तो भाई जब प्यार की बातें हो गई हैं तो हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या लिखना, अगर लिखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना कि एक सूर्य, एक चांद, एक लता जी, भगवान ने उनको बनाकर वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना कोई उनके जैसा हुआ है, ना कोई होगा। तो भाई ये सारी जो भावनाएं आपकी हम तक आ रही है, तो इन भावनाओं पर शायद ये गीत सबसे अच्छा रहेगा। आप हमें बताइए संगीत किसका है।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज। हमारे बहुत से साथी कहने की भी आज के इस मौके पर ये गीत सुनना चाहिए था या वो गीत सुनना चाहिए, तो इस तरह से गीतों की लिस्ट तो वो भेज रहे हैं। भाई कहा जाए तो हम तो इस मौके पर उनके सारे ही गीत सुनने चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज इतने सारे गीतों को दी है, अनगिनत गीतों को दी, तो उन गीतों को सभी को सुन पाना क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रमों में आज के दिन क्या, और लगातार 365 दिन उनकी आवाज में वो गीत हम सुनते रहते हैं और अपनी पसंद के गीतों को रोजाना हम सुन ही पाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारतीय लता जी का साथ तो ऐसा है जैसे सुर और संगीत का अटूट बंधन। बचपन की यादों से लेकर आज तक जब भी विविध भारती पर लता जी की आवाज गूंजती है तो दिल सुकून से भर जाता है। उनका हर गीत हमारे जीवन में किसी किसी किसी न किसी खूबसूरत याद से जुड़ा हुआ है। रेडियो के सबसे प्यारे मंच विविध भारती के माध्यम से लता दीदी के सदाबहार गीत हमारे दिलों में जिंदा रखने के लिए पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे पास उनके हर गाने का एक संग्रह है। पहले कैसेट में रहता था, आज फिलहाल पेन ड्राइव में है, क्योंकि जब भी कहीं सफर पे जाती हूँ तो अपनी ही पेन ड्राइव लगाती हूँ। मुझे अपने पसंदीदा गाना सुनना बहुत पसंद है। घर में भी वो लता जी को जब तक ना सुन लूं मुझे चैन नहीं होता। और एक बात मुझे बहुत पसंद है लता जी की कि उनकी आवाज तो पसंद है, साथ ही साथ उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो हमेशा एक सी रही। एक उनको बहुत ज्यादा चमक धमक में मैंने नहीं देखा और मुझे ये बेहद पसंद आता है। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर मैं उनसे मिलती, ये आपने पूछा था अगर हम मिलते तो क्या कहते, तो मैं उनसे कहती कि आप जैसी आवाज मुझे भी मिल जाए, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, उनकी सादगी अच्छी लगती है, हमेशा सफेद साड़ी में उन्हें मैंने देखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमें लता दीदी के बहुत से गीत बहुत पसंद है, पर कुछ गीत हमें बहुत ताकत देते हैं, जैसे जब दिल को सतावे गम तो छेड़ सकी सरगम, ऐ दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐसे गीत हमें बहुत पसंद है। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं और बताइए किस फिल्म से लिया है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है स्वर कंठिल कोकिला लता मंगेशकर की। ससुराल फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब भी आपने दिया। लता मंगेशकर से आप किस तरह से रखते हैं नाता, ये आप हमसे बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज हमारे कानों को नहीं हमारे दिल को छू जाती है। वो आज भी हमारे साथ हैं उनकी आवाज के साथ, और उनकी बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुनने का मन करता है। वैसे ही हमारे साथी ने बहुत से गाने हमारे साथी लिख लिख के भेज रहे हैं, लेकिन सारे गीत एक साथ एक घंटे में सुनाना, बल्कि हम कहते एक दिन में सुनाना भी मुश्किल है। तो वो गीत सुन लेते हैं जिनकी बातें हमने इबारत में की है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

मैं यही बात हम कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज के लिए भी कि हमसे ना पूछिए कि आप हमारे कौन हैं। चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे की आवाज आपने सुनी। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं तो आपकी ढेरों बातों के साथ हम भी इस बात से बिल्कुल कहते इत्तेफाक रखते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही घंटे में पूरा गीत सुनना, सभी पसंदीदा गीत सुनना तो मुश्किल है, लेकिन ये गीत शामिल ना हो तो बिल्कुल भी बात ना बने। तो हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज से सजा हुआ सजे हुए कई गीत आपको आज के बहुत से कार्यक्रमों में सुनने के लिए मिलते रहेंगे। तो बस दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम से।

0: expressed happiness over the Prime Minister's mention. Kamlesh Kumari of the Savitri Phule self-help group thanked the Prime Minister and said that PM's word have encouraged them.
1: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं और हम लोग मेहनत किए हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं पहले, और आंवला का लड्डू, मुरब्बा, जूस, बर्फी भी, यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
0: प्रतापगढ़ हैज मोर देन 196 यूनिट्स प्रोड्यूसिंग आंवला बेस्ड प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आर ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड टू सेवरल कंट्रीज। ओम अवस्थी, आकाशवाणी न्यूज, लखनऊ।
2: The center will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi after the inaugural session of the National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2026, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. At the Asian Games 2026 in Japan, India's Aisha Singh won the silver medal in women's 25-meter pistol individual competition at Aichi, Nagoya today. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Indian athlete Pinky Balhara secured the bronze medal in the women's under 78-kilogram kurash event. She won the medal after defeating South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinals. Earlier, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarterfinal against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi, Nagoya in Japan today. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bagged silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram kurash events. Details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली तीन दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता

से मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने

0: केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उस

0: ये अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
1: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
4: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
3: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
5: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
3: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
6: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की अन सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
7: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं।

0: जागृति शर्मा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: उजाला फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में जंगली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं चित्रलेखा फिल्म में लता मंगेशकर को। साहिल दिहानवी के बोल है रोशन का संगीत।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इससे ठीक पहले आपने सुना गाइड फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गीत, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। और कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बाप बेटे फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। ये सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: की सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और
2: नेहा शर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
2: हेल्दी नमस्कार
1: बिल्कुल हेल्दी नमस्कार यूं होता है कि भाई जब लगता है ना कि किसी ने कहा हेल्दी नमस्कार तो हाँ हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए।
2: हाँ जब हेल्थ की बात आ जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं सचेत हो जाते हैं कि हमें

0: क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या, मतलब कितना ध्यान रखना है अपना।
1: बिल्कुल। और देखो ना, आज जो है विशेष दिन तो हमारा चल ही रहा है, बहुत सारे दिवस हैं। मैं नेहा और हमारे श्रोताओं, आज हम कथा सुधा में कहानी भी सुनेंगे और बातें होंगी अधिकार और कर्तव्य, इसके संतुलन की। साथ में हम चलेंगे कश्मीर, उसके प्रादेशिक व्यंजन के बारे में हम जानेंगे कि आज कौन कौन से हम व्यंजन करने वाले हैं। आज हम राजमा गोगची और मोदुर पुलाव, इसके बारे में बात करेंगे। और श्रोताओं के आए भी हैं संदेश, तो और कुछ विशेष दिन भी है तो उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: नेहा, हमारी सारी सखियां और हमारे श्रोता भाई समझ ही गए होंगे कि ये गीत क्यों बजाया आज, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। 28 सितंबर का दिन हमें उस महान क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिसने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
0: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ

0: देखकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
1: और केवल 23 वर्ष की उसकी उम्र थी उनकी, जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में साहस, त्याग और देश प्रेम की जो भावना जागती है वो वाकई काबिले तारीफ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह सच भारत की युवा ना के अमर प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो ना, आज बहुत सारे विशेष दिन है, हम उसके बारे में भी आगे बात करते चलेंगे, बताते जाएंगे अपने साथियों को, और सब इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका?
1: किसका?
0: कहानी यानी कथा सुधा, जिसमें हम सुनने वाले हैं अमावस की रात, इस कहानी का पहला भाग।
1: तो चलिए सुनते हैं। सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: दीपावली की संध्या थी, श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे, प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साण अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते, समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी, प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
4: गिरिजा, गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
3: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी, मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था, और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था, वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते,

0: परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली, प्रत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
1: आज तो दिवाली है।
0: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
2: हाँ, आज दिवाली है।
0: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा,
1: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
0: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। हाँ,
0: देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य

0: जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन,

0: सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनेलागीर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज जांफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफ़ुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी इजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है, इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबी रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
0: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा आपको इस सायद की पावनी है, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
0: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई।
3: अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पात्रिकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: अभी पहली कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है ना कि पूरी ही हो जाएगी बात।
5: बिल्कुल, ऐसा मन तो यही करता है, लेकिन अगले सोमवार हम इसका अगला भाग सुनेंगे।
4: और अभी क्या सुनेंगे?
5: एक गीत सुनेंगे
4: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया।
4: तो दीपा जी, जश्न का माहौल तो आ ही रहा है, निकट आ रहा है, क्योंकि विविध भारती में जश्न का माहौल होने वाला है 3 अक्टूबर को, और एक आवाज का जश्न भी आज हम मना रहे हैं।
5: बिल्कुल,
4: क्योंकि आज क्या है,
5: आज देखिए लता मंगेशकर की जन्म जयंती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा नेहा जिन्होंने कभी जिनके जीवन में कोई तो पल, कोई ऐसा वक्त आया होगा जहां पे उनके गीत ने उनको छेड़ा नहीं होगा या उसका बहुत गहरा असर नहीं हुआ होगा, है ना?
4: बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गीत हैं, इतने सारे भाव हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसने, कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब हम लता मंगेशकर की आवाज नहीं सुन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और खासतौर से अगर हम विविध भारती सुनते हैं तो एक गाना नहीं, कई गाने हम सुनते हैं रोजाना
5: की आवाज में। बिल्कुल, और हिंदी संगीत और हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही ऐसा कोई दिल भी होगा ना जिन्होंने उनकी आवाज ने कभी छुआ ना हो उन किसी एक व्यक्ति के दिल को। और उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता भी थी, विरह की कसक भी थी।

0: भक्ति की मिठास और देशभक्ति का जोश भी रहा।
1: हाँ, और कई बार वो बच्चों की लोरियों से शुरुआत होती है, कहते हैं बचपन से शुरुआत हो गई उनकी आवाज के साथ और अंत तक हम उनकी आवाज के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब उम्र के हर पड़ाव में। और उनके गीतों में रिश्तों की उलझन भी हमें सुनाई देती है, तो कभी प्यार की गहराई महसूस होती है, कभी पूरे देश की आंखें उन्होंने नम की, तो कभी मन में भक्ति और शांति का भाव भी लता जी की आवाज ने जगाया है।
0: बिल्कुल, और लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने भावनाओं को आवाज दी। नेहा, उनकी आवाज कई पीढ़ियों की यादों में, प्रेम में, और हमारे जो पसंदीदा गानों की जो प्लेलिस्ट होती है ना, हाँ। उसमें एक गाना तो जरूर लता जी का रहता होगा। आप भी श्रोताओं जरूर बताइएगा, क्या आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना नहीं रहता?
1: अरे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूछने की बात नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जैसे इससे ठीक पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें भी जब बातें आ रही थी तो ये हो रहा था कि ये गीत तो रह गया। तो फिर हमारी श्रोताओं ने भी एक कहा और हमने भी यही कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक घंटे में पूरा करना तो वैसे ही मुश्किल है, एक दिन में पूरा करना भी मुश्किल है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है।
0: बिल्कुल। और जब अपने ये कार्यक्रम सखी सहेली के लिए जब गानों की चुनाव हम लोग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था इस गाने को ले या इस गाने को ले, क्योंकि इतनी लंबी जो फहरिस्त है उनके गानों की, तो बस कुछ ही गाने हम तो यहाँ ले पाए, लेकिन आज आप दिन भर उनके गानों का आनंद लेते रहिए।
1: हाँ, विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों में आनंद आज तो लेंगे ही और बाकी दिनों भी लेते हैं। जैसे कि हमने कहा 365 दिन उनके गीतों का हम आनंद लेते हैं, इससे तो कोई अंतराल हमें मिलता नहीं, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल का वक्त है।
0: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद हम आ चुके और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली,
0: और इतनी सारी बातें हो गई लता जी की और गीत नहीं सुना उनका,
2: तो सुनेंगे अभी,
0: चलो सुनते हैं।
2: हाँ।

0: दीपा जी, गाना तो अच्छा था लेकिन आपने मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं बजाया?
1: अरे भाई देखो, इस गाने में तुम्हारा नाम था। हा? नहीं, वो वाला लाइन तुमने सुनी? इस गाने की पंक्ति, जब से सैया तो उसे नेहा लागे, पीछे पीछे मैं तू आगे आगे, तुम्हें ही तो आगे रखा है।
0: हाँ, इसी वजह से मैंने आगे आगे गाना सुन लिया वो पूरा, लेकिन और भी एक अच्छे अच्छे गाने हैं मेरे पसंद
1: भाई। नेहा, तुम्हारे पसंद का गाना इस प्लेलिस्ट में है, कैसे भूल सकती हूँ?
0: भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूल ये भी नहीं सकते हैं कि आज बहुत सारे दिवस भी हैं और एक बहुत ही खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना पहुंच दिवस, जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है?
1: इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को, मतलब सभी को, आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी आसानी से उन तक पहुंच सके।
0: और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत हुई 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। और अब जब हम डिजिटल युग में है और सूचना फटाफट हम तक पहुँचती है, पहले से आसानी से सूचनाएं हम तक पहुँचती है, लेकिन गलत सूचनाएं भी उतनी ही जल्दी हम तक पहुंच जाती है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है।
1: इसलिए ये दिवस हमें समझाता है कि सही सूचना व्यक्ति को जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। तो भाई, जब बात इतनी सूचनाओं की हो रही है तो चलिए एक सूचना ये भी दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
1: नेहा, बात जब संदेशों की हो रही है और जानकारियों की हो रही है तो हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है।
0: बिल्कुल, और ये हर साल जैसे कि कह सकते हैं आज के दिन यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि रेबीज जो है बीमारी, वो उसके प्रति जागरूकता फैले, इस जानलेवा बीमारी के बचाव के उपायों की जानकारी का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत जरूरी है ये।
1: और महत्व ये है इस दिवस का कि सही समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, इसलिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी और ये दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज को रोकने के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था।
1: और रेबीज जो खास तौर पे संक्रमित जानवरों के काटने से या उनकी लार के संपर्क से फैलता है और श्वान इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है।
0: तो यदि कोई जानवर अगर आपको काट देता है, आमतौर पर जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो तो घाव को तुरंत आप साबुन और बहते पानी से

0: अच्छी तरह से धोइए और बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है आपका।
1: बिल्कुल।
0: और इस दिन का संदेश है जागरूकता, समय पर उपचार और पशुओं का टीकाकरण ही रेबीज से बचाव की कुंजी है। तो अगर आप पालतू जानवर रखते हैं अपने आसपास, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी समय समय पर टीकाकरण कराएं। उनका भी टीकाकरण होता है, उनकी भी देखभाल आपको उसी तरह से रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और भाई ये भी जरूरी है कि एक और गीत जो कि नेहा की प्लेलिस्ट में है और हमने वहां से चुरा कर यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए चुन लिया है।

0: वह कि जो नेहा की चाह हो और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, है ना सखी।
1: लेकिन अधिकार और कर्तव्य का संतुलन भी तो होना चाहिए ना दीपा जी।
0: ये बात तो सही है। अब अगली बार अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगी?
1: हाँ, सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य बन रहा है या नहीं।
0: जी। लेकिन हाँ, हमेशा हम इस तरह से नहीं चल सकते कि अच्छा ये अधिकार है या कर्तव्य है, तो वो इक्वेशन हमेशा दिमाग में नहीं बना सकते, है ना।
1: क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, पर ये भी समझना चाहिए कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
0: बिल्कुल। और अपने अधिकारों के लिए हम जितना जागरूक रहते हैं ना नेहा, दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान उतना करना चाहिए। हमें अपने बारे में तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरह हमें अपने सम्मान या स्वतंत्रता या समानता हमें चाहिए, उसी तरह से ये अधिकार दूसरों को भी मिलना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो हमने ध्यान रखा ना, तुम्हारी पसंद का गाना बजा दिया।
1: बिल्कुल। और असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है ना, क्योंकि घर में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता अगर हमें मिली तो उसका अर्थ ये नहीं कि मनमानी हम करें। हमें अपनी पसंद से अपने निर्णय लेने की आजादी तो मिलती है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और सिर्फ परिवार में ही नहीं नेहा, ये हमारे आसपास हो या समाज हो या बड़े तौर पे बात करें तो देश, सब जगह ये बात लागू होती है, जिसे हर जगह हर स्थिति में हम इसे देख सकते हैं।
1: जैसे कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। हमें सुरक्षित चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमने अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट चलाएंगे, या हम पैदल चल रहे तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में कभी भी कहीं से भी चलने लगेंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
0: और इसी तरह से बात आती है अगर वातावरण की, तो स्वच्छ वातावरण अगर हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है, और हम इस बात के लिए कई बार ये बात उठाते भी हैं, तो स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। हम साफ सुथरी सड़कें रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें, कचरा यहां वहां ना डालने, न तो खुद डालें न दूसरों को डालने दें।
1: बिल्कुल। और प्रकृति से जो संसाधन हमें मिलते हैं उस पे भी हमारा अधिकार है, लेकिन उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, बिजली और पेड़ों का सोच समझ कर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। तो खत्म होने वाले संसाधन है।
0: और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, तो उस पर भी हम अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हम रख सकते हैं। कैसे? कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि कोई झूठी बात है या कोई ऐसी किसी का अपमान ना हो जाए, या कोई ऐसे बोल ना हो, कड़े बोल इस तरह के ना हो कि किसी की प्राइवेसी या किसी की निजता पे नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए।
1: भले ही वो आपकी अपनी वॉल है, आप कह सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपका कर्तव्य है
0: जी।
1: अब आप उसे पालन करें ना करें वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। वैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना उनका कर्तव्य है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के साथ साथ उनको जिम्मेदारियों का महत्व भी वो समझाते जाएं।
0: बिल्कुल। और अधिकार मांगते समय दूसरों की जो सीमाएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह हमने उठा के कह दिया ये तो मेरा फर्ज है, अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परिवार हो या कोई कार्यस्थल हो या समाज हो, आपसी समझ और संवाद से ही संतुलन हम कायम रख सकते हैं, है ना।
1: हाँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं। और हम अपनी, जैसे कि हम एक लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करें, छोटे छोटे काम जो हैं समाज में अनुशासन तो बढ़ाते हैं और साथ में हमारे अंदर संवेदनशीलता भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अधिकार देखो हमें सशक्त तो बनाते ही हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। और जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझते हैं, तभी परिवार हो या समाज हो, देश हो, तो हम सच्चा संतुलन और अपने लिए एक बेहतर जीवन तभी संभव कर सकते हैं।
1: और सच्चा संतुलन तो यही है कि जब हम बातें करते रहते हैं तो बीच बीच में गीत भी चलाते रहते हैं, है ना।
0: तुम्हारी आंखों में क्या लिखा है सब समझ में आ रहा है मुझे।

0: भाई लिखा तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत से संदेश है। हमारे साथियों ने लिखा है कि अधिकार के लिए तो कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्य निभाने की बात आती है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं।
1: और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये दोनों जो रूप है वो अविभाज्य है। अधिकारों के बिना कर्तव्य निरर्थक हो जाते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी ने अपने अधिकारों का किस तरह से पालन किया है बता रहे हैं कि राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, अपना घर तो अपना घर, पड़ोसियों के यहाँ भी बने तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं कि पहले मुझे खिलाते हैं और बाद में वो सभी खाते हैं और मैं भी उनके बनाए राजमा चावल की तारीफ करने से नहीं थकता। वैसे पंजाबी परिवारों का व्यंजन माना जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हम बड़े चाव से खाते हैं। वही एक साथी है वो कह रहे हैं कि कश्मीर के व्यंजन झारखंड में ना के बराबर बनते हैं। तो सखी सहेली में व्यंजनों को सुन रही हूँ तो कश्मीर के व्यंजनों में रुचि पैदा हो गई है। खासकर पिछली बार पनीर की सब्जी सुनी थी बिना प्याज लहसुन और टमाटर वाली, उसके बाद से कश्मीरी व्यंजनों में बहुत रुचि पैदा हो रही है, तो इसका इंतजार रहेगा। तो इंतजार खत्म करें।
1: चलिए तो पहले कौन से वाली रेसिपी बताएं, राजमा गोगची या
0: राजमा में तो टाइम लगता है बनने में, पुलाव बना लेते हैं पहले।
1: चलो तो ठीक है, पहले पुलाव बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, बासमती लेना है 1 कप, जो कि तिकल लगभग 30 मिनट पानी में भिगोया हुआ हो। देसी घी लेना है 2 बड़े चम्मच, चीनी या मिश्री 1/2 से 1 कप, जैसे आपके घर में मिठास पसंद हो वैसे, और केसर के कुछ आपको धागे लेने हैं 1 छोटा चम्मच के करीब, और बल्कि उससे थोड़ा कम ही लग जाएगा। और खड़े मसाले यानी कि 4 हरी खड़ी बड़ी वाली हरी इलायची लेनी है, बड़ी वाली भी लेनी है, 3-4 लौंग, 1-2 दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज पत्ता। सूखे मेवे जो आपके घर में हो और जो आपके वहाँ पसंद हो वो ले लीजिए। अब बनाना कैसे है इसको, कि बासमती चावल को अच्छी तरह से आपने धो लिया, 30 से 45 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया, फिर इसको छान लीजिए बहुत अच्छे से। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करें, उसमें कटे हुए जो काट लीजिएगा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे काट लीजिएगा, उन सबको आप हल्के से सुनहरे होने तक भून लीजिए। हाँ, इन सब ड्राई फ्रूट्स में किशमिश को आप अलग रख दीजिएगा। और बचे हुए घी में

0: हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता डालें। इसके बाद 2 कप पानी डालें और वो जो केसर वाला जो आपने भिगा के रखे थे केसर के धागे
1: दूध
0: वो, हाँ दूध में, वो भी डालना है। अब पानी में उबाल आने के बाद फिर धीमी आंच करके इसमें चीनी मिलाइए और घुलने दीजिए। इसके बाद भीगे हुए चावल और भुने हुए सूखे मेवे जो आपने लिए थे वो डालना है। पैन को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल सारा पानी सोख न ले और अच्छी तरह इसको आपको पका लेना है। और फिर बाद में आप देखिए इसके ऊपर आप चाहें तो सजाना है तो केसर की पत्तियों के साथ और सूखे मेवे के साथ कर सकते हैं। ये जो केसर या भात जो कहते हैं घरों में बनता है ये उसी तरीके का ही है।
1: तो फिर राजमा गोगोची की रेसिपी भी बता दे जो इसके साथ खानी है। इसके लिए हमें राजमा चाहिए, सूखी गोगोची, गोगोची यानी गुच्छे वाले में जो मशरूम होते हैं उनको कहते हैं, और दही चाहिए आवश्यकता के अनुसार, और साथ में चाहिए सौंफ पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ, जीरा, हींग, नमक, तेल या घी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को भिगोकर अच्छी तरह से पकाया जाता है, फिर सूखी गोगोची को साफ करके पानी में भिगोया जाता है और इसके बाद मसालों का आप तड़का लगाइए। राजमा और गोगोची को धीमी आंच पर पकाइए धीरे धीरे, और धीमी आंच पर जब आप पकाते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह हमें भी मिलती है और साथ में इससे व्यंजन का स्वाद भी गहरा हो जाता है। और फिर इसके बाद आप इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मधुर पुलाव के साथ, है ना।
0: तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट खाली हो गया है ना, खुशबूदार। हाँ। मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी
1: खुशबू आने लगी है। अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है।
0: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
1: हाँ?

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनके गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो आज के इस कार्यक्रम से भी लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और दीपा महेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर ज्योति शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे स्त्रियों से संबंधित बीमारियों को लेकर। तो डॉक्टर साहिबा, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विविध भारती मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: जी, तो आज डॉक्टर साहिबा हम आपसे महिलाओं की रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर हम बात करें पीसीओडी है, पीसीओएस है
1: जी,
0: पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल बदलाव जो हम महसूस करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एक और खास विषय है आईवीएफ
1: जी,
0: ये क्या है इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे।
1: जरूर।
0: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं।
1: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक। तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ,

0: मैं अब गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है.
1: अच्छा.
0: यस. सो ये एक चेंज मैंने देखा है. दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल. तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ. दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती हैं लेकिन बच्चा लेट करती हैं, या लेट करती हैं और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है. तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20 साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो PCOD जो है या PCOS या अभी PMOS हम जो बोलते हैं वो काफी बढ़ चुका है. जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है ये एक काफी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है. PCOD में ये है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं. तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है.
1: अच्छा.
0: ये पहले नहीं था. हाँ. तो ये भी अभी मतलब जो
1: बहुत
0: जो
1: बड़ी
0: समस्या है. तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या PCOD, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है. तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए. और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है तो वुमेन काफी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं. तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है तो शी शुड टेक हेल्प. एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है तो उनको कंसल्ट करना चाहिए.
1: बिल्कुल, आपने सही कहा. और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं.
0: जी. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं, तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में. और सेकेंडली जो थकावट है ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका. अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये. और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए. तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है, बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हो जाना. तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब. तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए. और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इश्यू है. तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच
1: संभावना हो सकती है. तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए.
0: जरूर,
1: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए.
0: डेफिनेटली
1: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना है.
0: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है.
1: जी जी.
0: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए.
1: बिल्कुल. और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है. यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं. जो वर्किंग वीमेंस हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं. तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले.
0: जी, तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट.
1: अरे

0: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
1: जी।
0: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
1: जी,
0: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
1: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है। और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में महावारी डिले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके

0: बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
1: जी,
0: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना,
1: निकल
0: ये हो निकल, पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे 2 पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
0: यस। तो सिवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
1: लक्षण है
0: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
1: हो सकता है। तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
0: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है। अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसी होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैन नॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है। तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल। तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है
1: जी। तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने
0: जी। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली है बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है। जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है। क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही
1: जरूरी है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से कि गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है
0: जी,
1: ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहिब, आप पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली। अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओ एस नहीं बोलते हैं, हम PMOS बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स, वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस है जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है।
1: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से
0: रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड
1: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा

0: हमें लगता नहीं
1: जी
0: है,
1: जी
0: और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे
1: हो
0: सामने आते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं, यस डेफिनेटली।
0: आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली
1: जी
0: पतली लड़की को भी ये समस्या
1: हो
0: हो
1: सकती
0: सकती है,
1: है
0: इस
1: जी।
0: बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला माँ नहीं बन सकती,
1: नहीं
0: ऐसी कोई
1: बिल्कुल
0: धारणा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है, जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से। इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है।

0: चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में, तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है, यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को बदल दें। यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियां 1-2-3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8-9-10 बजे के पहले उठती नहीं है, तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन।
1: बिल्कुल।
0: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9:30-10।
1: अच्छा
0: जी,
1: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना करते हैं या देखना पसंद करते हैं।
0: यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
1: हाँ।
0: तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
1: नहीं
0: है। और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12-1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रीट होने लगता है जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है।
1: अच्छा।
0: इसीलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना यानी अर्ली डिनर, जैसे 7:30-8 o'clock यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10-10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता
1: नहीं
0: है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है। और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का।
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना। और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर सकते हैं।
0: 100%
1: डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: आज फिर जीने की तमन्ना।

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock तक खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला
0: नहीं है, बिल्कुल।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले। और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज्यादा कार्ब्स रहते हैं, उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के, जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं। तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं।
0: ठीक है।
1: तो जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होती है, तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है। वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलॉन्ग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलड, यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक। तो प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक, जो मेन क्रिमिनल, मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है, वो ना हो। तो उसके लिए लंच में आप सैलड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें। सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलॉन्ग विथ सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चिल्ला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को
0: नहीं होने
1: के लिए।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए।

0: हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए, उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है, तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी ये सब इसका सेवन ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है और छान के
1: बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना। हाँ। चलो कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाएगी,
0: नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: डेफिनेटली, मतलब और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है,
0: कम हो जाता है। और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
1: 100%
0: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का,
1: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है। प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल ये है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो है वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है।
0: अच्छा। सो इट्स अलग अलग शैली में,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 days
0: होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशियो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: तो जल्दी
1: होने लगता है। तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में महावारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेकर बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कंप्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जब पीरियड शुरू हो रहा है, दैट मींस अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मींस देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
0: बहुत
1: जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या

0: भी बताएं,
1: बताना।
0: लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम बताते ही हैं, लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है उनको।
1: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
0: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट वन ईयर या टू ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना की वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूसली ब्लीड हो रही है।
1: हाँ।
0: तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली एनीमिक हो जाएगी उसकी। और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है।
1: तो ये भी चिंता का विषय हो जाता है,
0: काफी बार मदर्स आती हैं
1: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए।
0: जी जी जी,
1: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी।
0: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में।
1: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा ना छोटी बच्ची को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है, तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं इरेगुलर भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़कियां तो रोने भी लग जाती है, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम दो चार होते हैं। तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए, और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
0: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
1: अलग होती है,
0: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्ची, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके एक डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर्स ले, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज की जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है, तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है।
1: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
0: जी
1: बताइए।
0: दिल है छोटा सा छोटी सी आशा,
1: आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसे आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चली गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह कर पाया है। हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमेन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सर्फेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली

0: रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ MRI. मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट
1: जरूरी है. yes. इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना,
0: बिल्कुल नहीं. yes.
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई. और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, जलन होना, असामान्य श्राव, ज्यादा श्राव होता है. ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं. तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
0: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज, जो लुकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले.
1: अच्छा.
0: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है. तो अगर व्हाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड, मतलब मिड साइकिल में है. बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है या बहुत यस बदबू आना, या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
1: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
0: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है.
1: बिल्कुल.
0: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर.
1: अच्छा. जो एक आम समस्या है.
0: यस. इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे. मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, खास करके विलेजेस में.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर.
1: अच्छा.
0: हाँ
1: जी.
0: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है. और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है.
1: जिस तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता.
0: जी, बिल्कुल.
1: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं. ये भी एक आम समस्या की,
0: ये बहुत ही आम है,
1: आम समस्या है.
0: यस.
1: तो ये एक सामान्य है या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
0: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ. ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है. लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस बोलते हैं, फाइब्रॉइड्स. तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है, यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है, जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक. अगर ये सिम्टम्स है तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं.
1: अच्छा.
0: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. नो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स,
1: कहाँ में है,
0: कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है.
1: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है?
0: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी. जैसे हम कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट, मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है. वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है, अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं.
1: इसलिए सचेत हो जाना चाहिए, और जैसे ही हमें

0: इन्फेक्शन मिलते हैं
1: जी,
0: तो डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज हमें,
1: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है, यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी यू नो डेढ़ महीना दो महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का
0: जी। तो एक गंभीर समस्या बन सकती है
1: बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है, तो डरना नहीं है।
0: इलाज संभव है इसका?
1: यस, इलाज संभव है, और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना, हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं।
0: ठीक, तो चलिए गीत सुन लेते हैं
1: जी।
0: बताइए,
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे,
0: बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़।

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे PCOD और IVF। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के।
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के ठीक 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सरिता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। और हमारी बहनों कैसे हो? आशा करते हैं हमारी बहनों का जीवन खुशियों से भरा हो। बहनों, आज हम बात करेंगे सिविक सेंस क्यों जरूरी है। सिविक सेंस यानी नागरिक चेतना का अर्थ केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं है, यह कानून और नियमों के सम्मान, दूसरे नागरिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी व्यवहार का नाम है। बहनों, भारत आज दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। देश में एक्सप्रेसवे का विस्तार हो रहा है, महानगरों में मेट्रो नेटवर्क बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी विकसित हो रही है, डिजिटल सेवाएं आम नागरिक की पहुंच में आ रही हैं और आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास की नई कहानी लिख रहा है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के बीच एक सवाल लगातार हमारे सामने खड़ा है, क्या हमारी नागरिक चेतना भी उसी गति से विकसित हो रही है जिस गति से हमारा भौतिक विकास हो रहा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास केवल उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और आधुनिक तकनीक से तय नहीं होता। विकास की वास्तविक कसौटी यह भी है कि वहां के नागरिक सार्वजनिक जीवन में कितना अनुशासन, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाते हैं। सड़क पर कूड़ा फेंकना, लाल बत्ती पार करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, कतार तोड़ना, अनावश्यक हॉर्न बजाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फुटपाथ या सड़क को अपनी सुविधा के लिए घेर लेना, बहनों, यह महज छोटी छोटी गलतियां नहीं है। ये उस सामूहिक नागरिक संस्कृति का प्रतिबिंब है जो समाज के चरित्र को निर्धारित करती है। बहनों, दुख की बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपने घर को साफ रखना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन वही जिम्मेदारी सड़क, पार्क, बस स्टैंड या बाजार तक पहुंचते पहुंचते कहीं पीछे छूट जाती है। बहनों, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं उसी तरह हमें सार्वजनिक जगहों पर

भी सफाई रखनी चाहिए। मैंने सरकार व्यवस्था बना सकती है, कानून बना सकती है और जुर्माना लगा सकती है, लेकिन नागरिक के भीतर जिम्मेदारी की भावना पैदा करना केवल सरकारी आदेश से संभव नहीं है। यह भावना हमें खुद जगानी होगी। बहनों, नागरिक की पहली पाठशाला परिवार और स्कूल होती है। सिविक सेंस की शिक्षा स्कूलों में शुरू से ही बताएं कि केवल किताबों में ही जरूरी नहीं, वह व्यवहार में भी झलकनी चाहिए। उन्हें बताएं सड़क कैसे प्यार करनी है, कतार में अपनी बारी का इंतजार कैसे करना है, सफाई कर्मचारियों के श्रम का सम्मान करना सिखाएं। बहनों, बच्चे जैसे देखते हैं वैसा ही करते हैं। जब माता पिता अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे भी उन्हें देखकर सीखते हैं और वो भी अनुशासन में रहेंगे। इसलिए बदलाव की शुरुआत स्वयं से करें। भारत को बेहतर बनाने के लिए हमेशा किसी बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती। बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे व्यक्तिगत संकल्पों से हो सकती है। मैनो, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सुनो सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बहनों, इस गीत के बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष की थीम स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत और विकसित भारत है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के व्यापक जन भागीदारी दृष्टिकोण के तहत स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी और स्वच्छता के प्रति सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। बहनों, स्वच्छता केवल शरीर या आसपास की सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है जो हमारे मन, विचार और पर्यावरण को भी समाहित करती है। यह एक ऐसी आदत है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है, साथ ही हमारे समाज और राष्ट्र को भी प्रगति की ओर ले जाती है। स्वच्छता का अर्थ है गंदगी, धूल, कूड़ा करकट और अशुद्धियों से मुक्ति पाना, ताकि हम एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रह सकें। यह व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर तक एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक साफ सुथरा परिवेश मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। यह स्वच्छ समाज अधिक आकर्षक होने और रहने योग्य होता है, जो पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। बहनों, स्वच्छता केवल सरकार या किसी अभियान की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह है हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने घरों, गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने की आदत डालनी चाहिए। कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, पानी को बर्बाद ना करना और अपने आसपास हरियाली बनाए रखने का हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। बहनों, महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को

ईश्वर के समान माना था। उनका मानना था कि स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने अपने जीवन काल में स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। वे स्वयं झाड़ू उठाते थे और लोगों को अपने आसपास की सफाई के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने स्वच्छता को आत्मसम्मान और गरिमा से जोड़ा और यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने परिवेश को साफ रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गांधी जी के ये विचार आज भी हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं और प्रेरणा देते हैं। बहनों, गांधी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। बहनों, यदि हम स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बना लें तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। बहनों, आज सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के अनुसार इसकी थीम डिजिटल युग में सूचना की अखंडता को बनाए रखना है और सूचना अव्यवस्था को दूर करने में सूचना तक पहुंच की भूमिका है। इसे पहली बार यूनेस्को द्वारा 2015 में अपनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से 28 सितंबर को इस दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य जनता के लिए विश्वसनीय समय पर और आधिकारिक जानकारी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। यह दिन डिजिटल दुनिया में गलत सूचना और फर्जी खबरों से मुकाबला करने तथा समाज में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देता है। आइए बहनों, अब आपका करवा देते हैं एक और गीत के साथ मनोरंजन।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: भारत देश का दुलारा, भगत सिंह सबसे प्यारा, भारत माँ के लाल थे वो, आजादी की थी उन्हें चाह बड़ी। बहनों, भारत जब भी अपने आजाद होने पर गर्व महसूस करता है तो उसका सर उन महापुरुषों के लिए हमेशा झुकता है जिन्होंने देश प्रेम की लिए हमेशा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम शहीद भगत सिंह का आता है। बहनों, 28 सितंबर को महान क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है, जिनकी शिक्षाएं भारत के लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी जयंती राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाई जाती है, जिन्होंने साहस और बलिदान का परिचय दिया और देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। एक देशभक्त परिवार में जन्म लेने की वजह से ही भगत सिंह को देशभक्ति का पाठ विरासत के तौर पर मिला। वे 5 वर्ष की आयु में स्कूल गए। वे अपने दोस्तों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद 1916 से 17 में लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला लिया। वहां वो लाला लाजपत राय के संपर्क में आए और वहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। बाद में वर्ष 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। बहनों, भगत सिंह के बारे में जितनी बातें बताई जाएं वो कम हैं। उन्होंने समानता के महत्व को जोड़ दिया। उन्होंने भूख और युद्ध मुक्त एक ऐसे विश्व की परिकल्पना की जो मानव जाति और राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे है। बहनों, आज है विश्व रैबीज दिवस। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जो हर साल 28 सितंबर को रैबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस घातक बीमारी को हराने में हुई प्रगति को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह तिथि फ्रांसीसी वैज्ञानिक

वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिन्होंने रैबीज का पहला टीका विकसित किया। इस दिवस की स्थापना सर्वप्रथम 2007 में ग्लोबल अलायंस फॉर रैबीज कंट्रोल द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की गई थी। तब से यह वैश्विक आंदोलन बन गया, जिसमें सरकारें, स्वास्थ्यकर्मी, पशु चिकित्सक और समुदाय शामिल हैं। मानो विश्व रैबीज दिवस पर लोगों को जागरूक किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि रैबीज कैसे फैलता है, यह कितना गंभीर हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या जानवर के काटने के बाद क्या करें। रैबीज एक विषाणु जनित जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। संक्रमित पशु की लार के माध्यम से वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। बहनों, यदि कुत्ते या अन्य पशु काट ले या खरोंच ले तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, उनके अनुसार अपना इलाज लें। WHO ऐसा मानते हैं कि काटे या खरोंचे वाली जगह को साबुन से 15 मिनट तक बहते पानी में धोना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे डॉक्टर आपको बता सकें कि एंटी रैबीज वैक्सीन कैसे लगवानी है। बहनों, यदि आपको या आपके आसपास किसी को कोई जानवर काट लेता है, स्वयं इलाज ना करें, तुरंत अस्पताल में जाकर इलाज करवाएं। बहनों, अब आपसे बात करते हैं कुछ वायु शुद्धिकरण के लिए जो इंडोर पौधे होते हैं वो कौन कौन से आप लगा सकते हैं। बहनों, अपने औषधीय गुणों से भरपूर सुखदाई जेल के लिए प्रसिद्ध एलोवेरा एक उत्कृष्ट वायु शोधक है, जो ये अपनी पत्तियों को पानी में संग्रहित करता है और बहुत हरा और रसीला पौधा हो जाता है। कम पानी में भी अच्छी तरह पनपता है और हवा को शुद्ध रखता है। बहनों, मनी प्लांट एक लोकप्रिय इंडोर पौधा है जो अपनी कम देखभाल और हृदय के आकार की चमकदार पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसे मिट्टी और पानी दोनों में उगाया जा सकता है। इसे सकारात्मक ऊर्जा आती है, यह हवा को शुद्ध रखने में सहायक होता है। बहनों, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो आप इंडोर प्लांट्स के रूप में लगा सकती हैं, यह घर की हवा को शुद्ध रखने में सहायक होता है। आइए बहनों, अब आपका करवा देते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, मन तो बहुत हो रहा है आपसे यूं ही बातें करते रहें, पर क्या करें, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। फिर आएंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सरिता चौधरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री शर्मा और आप सुन रहे हैं युववाणी। उम्मीद है आप सभी अपने दिन को पूरे उत्साह और मुस्कान के साथ जी रहे होंगे। बस यूं ही जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बातचीत का सिलसिला भी चलेगा और मिलती रहेगी कुछ नई नई बातें। तो चलिए इसी खूबसूरत माहौल के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं युववाणी। दोस्तों, जिंदगी में कुछ स्थायी नहीं होता, न समय, न हालत और न ही हमारी जिंदगी के रिश्ते और पड़ाव। जो हमारे आज हमारे पास है, जरूरी नहीं कि हमारे साथ रहे, और जो आज हमारे साथ नहीं, हो सकता है कल वही हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई बदलाव आए तो उससे घबराने की बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। कई बार हम बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, हमें लगता है कि जो चल रहा था बस वही चलता रहे, लेकिन जिंदगी अपने हिसाब से आगे बढ़ती है। बचपन गया, स्कूल का समय गया, कॉलेज का समय बदला, फिर नौकरी मिली, रिश्ते, जिम्मेदारियां, हर पड़ाव के साथ कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, और शायद यही बदलाव जिंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं। कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है तो कभी कोई नया इंसान हमारी दुनिया में आ जाता है। कभी कोई नौकरी बदलती है, कभी जगह बदलती है, कभी हमारी सोच बदल जाती है। उस समय भले ही बदलाव थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ में आता है कि उस बदलाव ने हमें कुछ नया सिखाया था। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई बदलाव चल रहा है तो खुद को बस इतना कहिए, जो बदल रहा है शायद उसके पीछे कोई वजह है। हर बदलाव बुरा नहीं होता, कुछ बदलाव हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ हमें नई राह दिखाते हैं, कुछ हमें समझाने आते हैं कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। बस एक बात याद रखिए, जिंदगी को रोक कर नहीं रखा जा सकता, समय आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए बीते हुए कल का सम्मान कीजिए, आज को पूरे दिल से जिए और आने वाले कल का खुले दिल से स्वागत कीजिए, क्योंकि जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा यही है कि यहाँ कुछ ना कुछ हमेशा बदलता रहता है। तो अगली बार जब कोई बदलाव आपकी जिंदगी का दरवाजा खटखटाए तो इससे डरने की बजाय मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस बदलाव के पीछे आपकी जिंदगी का कोई नया और खूबसूरत अध्याय आपका इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज है सोमवार और आज हम बात करेंगे करियर से रिलेटेड। करियर और सीखने के नए अवसरों की बात हो तो आज का मौका उन युवाओं के लिए खास हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने

का अनुभव हासिल करना चाहती हैं। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके बेहतर भविष्य के लिए दुनिया के कई देशों में काम करता है। ऐसे संगठन के साथ काम करने का अनुभव युवाओं के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। यूनिसेफ समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराता है। इन इंटर्नशिप के जरिए युवाओं को किसी विषय से जुड़े वास्तविक काम को समझने, प्रोफेशनल माहौल में काम करने और अलग अलग विशेषज्ञों के साथ सीखने का मौका मिल सकता है। ये अवसर खासतौर पर उन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उपयोगी हो सकता है जिनकी रुचि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल अधिकार, संचार, सामाजिक विकास, रिसर्च या इससे जुड़े क्षेत्रों में है। इंटर्नशिप के लिए योग्यता, विषय, अवधि और आवेदन की अंतिम तारीख अलग अलग अवसर के लिए अलग अलग होती है, इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपने रिज्यूम में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ काम करने का अनुभव जोड़ना चाहते हैं, तो यूनिसेफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इंटर्नशिप या कैरियर सेक्शन को जरूर देखें। हो सकता है आज आप सिर्फ एक इंटर्नशिप के जरिए आवेदन करें और लेकिन यही छोटा सा कदम आगे चलकर आपके करियर की दिशा ही बदल दे। तो दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने अनुभव को एक नई पहचान देना चाहते हैं, तो ऐसे अवसरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सही अनुभव और सीखने की इच्छा बहुत मायने रखती है। तो मौका मिले, जानकारी पूरी ले, अपनी योग्यता जांच ले और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आवेदन करे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है unisafecareer/internship-vacancies। तो दोस्तों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: यार सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दोस्तों, अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं और किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए खास हो सकती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में स्पोर्ट्स कोटा के लिए कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का अवसर युवाओं के लिए एक अलग रास्ता खोलते हैं। इस भर्ती की खास बात ये है कि यहाँ खेल प्रतिभा को भी महत्व दिया जाता है। यानी अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है और निश्चित स्तर पर खेल उपलब्धियां आपके पास हैं, तो आप आराम से खेल प्रतिभा के आधार पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के लिए पद निर्धारित किए जा सकते हैं। उम्मीदवार की योग्यता, आयु सीमा, खेल उपलब्धि और अन्य शर्त भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार तय होती है। इसलिए अगर आप आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जरूर जांच लें कि आपका खेल, आपकी खेल उपलब्धि और आपकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती की

मांगी गई शर्तों के अनुसार है या नहीं। चयन प्रक्रिया में खेल से जुड़ी जानकारी, जांच, ट्रायल के साथ साथ भर्ती नियमों के अनुसार अन्य चरण भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए केवल खेल में अच्छा होना जरूरी नहीं बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करना भी जरूरी है। अगर आपके पास किसी खेल में राज्य, राष्ट्रीय या निर्धारित स्तर की उपलब्धि है तो ऐसे अवसर आपके लिए खास महत्व रखते हैं। तो खिलाड़ियों, अपनी मेहनत को सिर्फ मैदान तक सीमित मत रखिए, आपकी खेल प्रतिभा आपके करियर का रास्ता भी खोल सकती है। CRPF की भर्ती से जुड़ी सही जानकारी, पात्रता, पदों की संख्या और आवेदन की तारीख है 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर और जरूरी दस्तावेज के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट CRPF रिक्रूटमेंट पोर्टल जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी के साथ उठाया गया एक कदम आपको खेलों में जुनून और नई पहचान दे सकता है। तो अगर आप खिलाड़ी हैं और वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं तो ऐसे अवसर आपके लिए जरूर काम आएंगे। दोस्तों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे चैलेंज की जहां आपकी सोच, आपकी आइडिया और कुछ नया करने का जुनून आपके लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज की। आज के समय में इनोवेशन सिर्फ बड़ी कंपनियों या वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं, हमारे आसपास की छोटी छोटी समस्याओं का कोई आसान और नया समाधान भी एक इनोवेशन हो सकता है। फिर चाहे वे शिक्षा से जुड़ी संस्था हो या पर्यावरण से, तकनीक से या रोजमर्रा की जिंदगी से, फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य भी युवाओं और नए इनोवेटर्स को अपने आइडिया सामने लाने और उन्हें एक मंच देने से जुड़ा है। इस तरह

के चैलेंज युवाओं को सिर्फ अपना आइडिया बताने का मौका नहीं देते, बल्कि उसे बेहतर बनाने, विशेषज्ञों से सीखने और अपनी आइडिया को आगे ले जाने का अनुभव भी दे सकते हैं। अब अगर आपके मन में भी कोई ऐसा आइडिया है जिसके बारे में आपको लगता है कि इससे लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, तो उसे सिर्फ अपने मन तक मत सीमित रखिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा आइडिया ही आगे चलकर बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। ऐसे किसी भी चैलेंज में हिस्सा लेने से पहले इसे आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन पर जाकर पात्रता, आवेदन की अंतिम तारीख, जरूरी दस्तावेज और जरूरी पात्रता, अंतिम तारीख और चैलेंज से जुड़ी पूरी शर्त जरूर पढ़ ले। और हाँ, आइडिया आपका है तो उसे पेश करने का आत्मविश्वास भी आपका ही होना चाहिए। तो युवाओं, अपनी सोच को एक मौका दीजिए, कुछ नया सोचिए, समस्या को पहचानिए और उसके समाधान का रास्ता तलाशिए, क्योंकि इनोवेशन हमेशा बड़ी लैब से नहीं निकलते, कभी कभी वे हमारे आसपास की किसी छोटी सी समस्या को देखकर हमारे मन में आया एक सवाल भी हो सकता है। एक सवाल होता है कि इसे थोड़ा बेहतर तरीके से क्यों ना किया जाए, और शायद आपका यही सवाल कल किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए। तो दोस्तों, अब इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

खुश रहते हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए युवाणी के साथ और यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त राजश्री शर्मा, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस सहमति पर समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर

0: पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसके अंतर्गत चर्चा होगी सब्जियों में विषाणु जनित रोगों से बचाव। आप सुनेंगे भेंटवार्ता, मशरूम उत्पादन से लाभ कमाएं। जानकारी दी जाएगी फल सब्जियों की कटाई और उसके उपरांत रख रखाव पर। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। तत्पश्चात रात 9 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। रात 10 बजे आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल। रात्रि के 10:20 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:51 से। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोखा। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 9 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला। सुबह 9:45 पर आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। तत्पश्चात 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष प्रसारण और

और कल प्रसारित किए जाने वाले प्रसारण और उनका समय। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

परवरिश फिल्म से भी आपने सुना है गीत। गीत को गाया था आशा भोसले, अमित कुमार, शैलेंद्र और आरती मुखर्जी ने। बोल लिखे थे मजरू ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम सुखविंदर सिंह की आवाज में। बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बयाना में कहा, गांवों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रदेश में 90 लाख से ज्यादा किसानों की फॉर्मर आईडी बनाई गई, शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा। समूचा देश आज शहीद आजम क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। और प्रदेश में मॉनसून की विदाई के बीच मौसम में एक बार फिर बदलाव, कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज भरतपुर संभाग के 5 जिलों को 993 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। बयाना में आयोजित समारोह में श्री शर्मा ने संभाग के 249 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गांवों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत का रोड मैप तैयार किया गया है।
1: देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये रोड मैप भी बनाया है कि आने वाले 3 साल के अंदर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के काम होंगे।
0: मुख्यमंत्री इसके बाद खैरथल पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बयाना और खैरथल में आयोजित कार्यक्रमों से प्रदेश के 7 जिलों को 1,109 करोड़ रुपए के 345 विकास कार्यों की सौगात दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक हताशा छिपाने की कोशिश कर रही है। इधर राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में 90,19,000 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। राजस्व और कृषि विभाग के प्रयासों से प्रदेश ने कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसान आईडी के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा कर लिया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि राजस्थान में किसान आईडी को राज्य के आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। किसान आईडी के जरिए प्रमाणिक डिजिटल पहचान विकसित होने से किसानों को बार बार दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी और विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की आज से नई दिल्ली में शुरुआत हुई। रबी फसल अभियान 2026 के लिए चलाए गए इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई क्षेत्र कम होने की आशंका थी, किंतु राहत की बात है कि इसका व्यापक असर नहीं हुआ है। श्री चौहान ने किसानों से मिट्टी की सेहत के लिए खाद का संतुलित मात्रा में उपयोग करने का आग्रह किया।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए, तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: पीएम किसान केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में कृषि योग्य भूमि वाले पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना का राजस्थान के 66,74,000 किसानों को फायदा मिल रहा है। आइए जानते हैं पीएम किसान योजना के बारे में।
3: पीएम किसान के तहत देशभर में पात्र किसान परिवारों को अब तक 23 किस्तों में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी पहलों में से एक

0: है। इससे देश भर के छोटे और सीमांत 9 करोड़ 44 लाख किसानों को फायदा मिला है, जिसमें करीब 2 करोड़ 18 लाख महिला किसान शामिल हैं। साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में मिलने वाली ये राशि पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण से शुरू होती है। इस योजना में आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण की पुष्टि के बाद पात्र किसानों को निधि हस्तांतरित की जाती है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से ज्यादा तकनीकी है। गौरतलब है कि सामान्य व्यक्तियों के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन मुफ्त रहेंगे। हालांकि दुकानदारों को किए जाने वाले भुगतान पर 0.4% की दर से एमडीआर लगेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समूचा देश आज शहीद आजम क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1907 में उनका जन्म पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। देश के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके अदम्य साहस को युवाओं के लिए प्रेरणापुंज बताया।
2: अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
1: महान गायिका लता मंगेशकर की भी आज जन्म जयंती है। हर संगीत प्रेमी आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उनका स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से लता दीदी ने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। भारतीय संगीत जगत में उनका योगदान पीढ़ियों तक याद किया जाता रहेगा।

जयपुर जिले के दौलतपुरा क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दौलतपुरा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि हादसा ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार हरमाणा इलाके के माचड़ा निवासी दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान घायल हुए दमकल कर्मियों में से दो की मौत हो गई। इस हादसे में केमिकल ड्रम में हुए धमाके से 14 दमकल कर्मी झुलस गए थे। विश्व रैबीज दिवस के मौके पर आज से प्रदेश में रैबीज सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके तहत आमजन में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि रैबीज गंभीर और जानलेवा बीमारी है, टीकाकरण से इसका बचाव संभव है। रैबीज सप्ताह के तहत संदिग्ध मामलों की पहचान, निगरानी और रोकथाम की गतिविधियों पर भी जोर दिया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की विदाई के दौर के बीच मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए रहे और शाम के समय जोरदार बारिश हुई। उधर सवाईमाधोपुर में भी कुछ देर झमाझम पानी बरसा। बीते 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई। देर शाम चूरू के सुजानगढ़ और बीकानेर के डूंगरगढ़ क्षेत्र में तेज बरसात के साथ ओले भी गिरे। सीकर के फतेहपुर में भी पानी बरसा। वहीं राजधानी जयपुर में भी बीती रात मौसम का मिजाज बदला और गलताजी सहित कई इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। कल पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश

0: बारिश हो सकती है। बाकी अधिकतर हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पर्युषण पर्व की समाप्ति पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैन समाज की ओर से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैन मंदिरों में अभिषेक, पूजा अर्चना और आरती के कार्यक्रम हुए। उधर सलूम्बर के जय संबंध कस्बे और वीरपुरा गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। और आइए अब आपको बताते हैं विश्व समाचार दिवस के बारे में।
1: आज विश्व समाचार दिवस है। तथ्यपरक और विश्वसनीय पत्रकारिता के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सच्चाई चुने, तथ्यों को जाने और भरोसेमंद पत्रकारिता चुने रखी गई है। एआई जनित गलत सूचनाओं और अफवाहों के दौर में प्रामाणिक समाचारों के लिए वैश्विक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 100 से अधिक देशों के हजारों न्यूज रूम और मीडिया संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के संदेश वाले इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मना रहे हैं। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई थी। इनमें 18 जवान शहीद हुए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयान में कहा, गांवों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रदेश में 90 लाख से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई, 100% लक्ष्य पूरा। समूचा देश आज शहीद आजम क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। और प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम में एक बार फिर बदलाव, कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल की ओर से तैयार किया गया है। जिले में पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव, तेजाजी मेले का आयोजन, कृषि, पर्यावरण और खेल से जुड़े कार्यक्रम हुए। जिले में कम बारिश के कारण खरीफ फसलों पर असर पड़ा। वहीं कृषि अनुसंधान केंद्र में कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की किस्मों पर काम जारी है। इस दौरान पंचायत समितियों और जिला परिषद के आरक्षण की लॉटरी भी निकाली गई तथा विभिन्न क्षेत्रों में सेवा शिविर लगाए गए। नगरीय निकाय चुनाव की करीब एक माह चली प्रक्रिया के बाद 21 सितंबर को अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव हुए। नागौर जिले के 9 निकायों में नागौर, मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड और डेगाना में भाजपा, जबकि जायल, बासनी और कुचेरा में कांग्रेस का बोर्ड बना। वहीं मुंडवा में आरएलपी और रियाबड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में तेजादशमी पर 2 दिवसीय मेला भरा। राजस्थान के अलावा कई राज्यों से श्रद्धालु मेले में पहुंचे। नवमी की शाम को महाआरती के साथ मेले की शुरुआत हुई। रात में तेजा गायन और जागरण हुआ। तेजादशमी को मंदिर में दर्शन और धूप के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। महिलाएं, पुरुष और बच्चे पैदल जत्थों में खरनाल पहुंचे। नागौर से खरनाल तक करीब 18 किलोमीटर मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। मेले के समापन पर साइकिल दौड़ भी आयोजित हुई। सेवा संकल्प अभियान के तहत वड़नगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प बाइक यात्रा की एक टोली नागौर पहुंची। टाउन हॉल में वड़नगर से वाराणसी सेवा संकल्प संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से यात्रियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने यात्रा के अनुभव और विभिन्न राज्यों की संस्कृति तथा खान पान के बारे में जानकारी ली। नागौर कृषि अनुसंधान उपकेंद्र में बदलती जलवायु और घटती जल संसाधनों को देखते हुए कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर अनुसंधान किया जा रहा है। बाजरा, रागी, कंगनी के साथ मूंग, काजरी, चावला और सफेद तिल की किस्मों पर परीक्षण चल रहे हैं। केंद्र में बाजरे की 25 संकर, काजरी की 20 और सफेद तिल की 10 किस्मों के ट्रायल किए जा रहे हैं। अश्वगंधा पर भी शोध जारी है। जिले में इस बार कम बारिश से खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित

0: हुआ है। अगस्त और सितंबर में पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसलें प्रभावित हुई हैं। किसान बची फसलों को समेटने में लगे थे कि तभी सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुई बेमौसम बारिश से कटी हुई और पकी फसलों को नुकसान पहुंचा। 23 सितंबर को जिला परिषद सभागार में पंचायत समितियों के प्रधान पद और जिला परिषद सदस्य वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। नागौर, खेवसर, जायल और मेड़ता सिटी पंचायत समितियों के प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले के गिरदावर सर्किल मुख्यालयों पर सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविरों में राजस्व से जुड़े खातों के शुद्धिकरण, नामांतरण, आपसी सहमति से विभाजन, रास्ते, सीमा ज्ञान, अतिक्रमण और भूमि आवंटन सहित विभिन्न कार्य किए गए। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़े काम भी किए गए। वहीं पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर नागौर की श्रीमती माडीबाई मिर्धा राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक घंटा खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्राओं के लिए 100 मीटर दौड़, रुमाल झपट्टा, टेबल टेनिस और म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिताएं रखी गईं। जिला खेल स्टेडियम में भी कबड्डी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की लवकुश वाटिका में 77वें वन महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान नीम, बर्ड, पीपल, शीशम और करंज सहित विभिन्न प्रजातियों के 300 पौधे लगाए गए। अधिकारियों ने पौधों की नियमित देखभाल और सिंचाई पर जोर दिया। कम बारिश को देखते हुए पौधों को सुरक्षित रखने और उनकी देखभाल करने पर विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बयानामा कहो गांवारा विकास सारू 50,000 करोड़ रुपया खर्चों कार्य योजना बनाई ची। प्रदेश में आए 90 लाख हों बत्ता किसाना रे फार्मर आईडी बनाई ची। शहीद आजम भगत सिंह ने आज मारी जयंती रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करिया जा रहा है। और प्रदेश में आए मौसम उजू पलटियो कई हल्का माय गरज सागर बिरखा भी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर संभाग रा 5 जिला सारू विकास रा 993 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा काम री नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। ई मौके बयाना माए राखी जी जनसभा माए मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार हर तबका रा भला सारू काम कर रही है। वह कहो कि आवता भगत माए गांवा रा विकास सारू 50,000 करोड़ रुपया रा खर्चों काम करावन री योजना बनाई जा रही है।
2: देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये रोड मैप भी बनाया है कि आने वाले 3 साल के अंदर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के काम होंगे।
1: मुख्यमंत्री पाछ खैरथल माए राखी जी जनसभा नहीं संबोधित कीनी। ई मौके केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ही मौजूद हा। मुख्यमंत्री बयाना और खैरथल माए राखी जी कार्यक्रम माए प्रदेश रा 7 जिला ने विकास रा 1,109 करोड़ रुपया रा 345 कामा री सौगात तीनी। वारा भाषण माए मुख्यमंत्री कहो कि संवैधानिक संस्थावां रा कामकाज माथे सवाल उठार कांग्रेस वारी सियासी हताशा छिपावन री कोशिश कर रही है। इबीचे राजधानी जयपुर माए कांग्रेस पार्टी री ओरों चुनाव आयोग रा कामकाज रा खिलाफ प्रदर्शन करी चियो। प्रदेश माए 90,19,000 किसाना रा किसान पहचान पत्र फार्मर आईडी बना दी रिची है। राजस्व और कृषि विभाग री कोशिशों प्रदेश कृषि और कल्याण मंत्रालय का नियुक्त करीजियो किसान आईडी बनावन रो लक्ष्य हासिल कर लीनो है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल आ जानकारी दीनी।

0: आंदोलक प्रदेश में किसान आईडी ने आधार डेटाबेस जोड़ी ची है। किसान आईडी रे जरिए प्रामाणिक डिजिटल पहचान विकसित फेवनो किसाना ने सरकार री न्यारी न्यारी योजनावां रो सीधो फायदो लेवन सारू बार बार कागजात पेश करन री जरूरत नी वह है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रो उद्घाटन कीनो। रबी फसल अभियान 2026 रा तेत राखी जाई सम्मेलन रा उद्घाटन जलसा में श्री चौहान कहो के अल नीनो रा असरु बुआई रो हल्को कम विवन री शंका ही पण इनरो घणो असर नी भयो जो सुकून री बात है। कृषि मंत्री किसानों मिट्टी री सेहत बनाई राखण सारू जरूरी तादाद माई खाद काम लेवन री अरज कीनी।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: सरकार साल 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि शुरू कीनी है। इनरो मकसद देश में खेती री जमीन वाला पात्र किसाना ने हर साल 6000 रुपया री माली मदद देवनो है। ई योजना रो प्रदेश रा 66,74,000 किसाना ने फायदो मिल रियो है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पीएम किसान के तहत देश भर में पात्र किसान परिवारों को अब तक 23 किस्तों में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी पहलों में से एक है। इससे देश भर के छोटे और सीमांत 9,44,00,000 किसानों को फायदा मिला है, जिसमें करीब 2,18,00,000 महिला किसान शामिल हैं। साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्त के रूप में मिलने वाली ये राशि पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण से शुरू होती है। इस योजना में आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण की पुष्टि के बाद पात्र किसानों को निधि हस्तांतरित की जाती है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: सुप्रीम कोर्ट 2000 रुपयों बत्ते रकम रा यूपीआई रे जरिए लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करण रा केंद्र सरकार रा फैसला माथे रोक लगावण नट गयो है। एमडीआर रो प्रावधान 15 अक्टूबर नु लागू भेला। अदालत केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक एर एनपीसीआई ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह रे मियाद माय जवाब दाखिल करण सारू कहो है। सुप्रीम कोर्ट कहो के ओ मुद्दो कानूनी बत्तो तकनीकी है। ध्यान जोग है के सामान्य लोगां बीच यूपीआई रे जरिए भेवण वाला लेन देन माथे एमडीआर नी लागेला, पण दुकानदारा न करिया जावण वाला चुकारा माथे 0.4% री रेटू एमडीआर लगायो जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। शहीद आजम भगत सिंह ने आज मारी जयंती रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करिया जा रहा है। साल 1907 में आज ही री तारीख ने पंजाब रा लायलपुर जिला रा बंगा गांव में भगत सिंह जन्मिया हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश जारी कर अमर शहीद भगत सिंह ने श्रद्धा भाव सागर याद करता थका मारी हिम्मत ने नौजवाना सारू सीख देवन वाली बताई।
3: अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता।
0: बेहतरीन गायिका लता मंगेशकर ने ही आज मारी जयंती रे मौके याद करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए लता मंगेशकर ने याद करता था का कहो के गावण री काबिलियतों लता मंगेशकर दुनिया माए भारत रो मान बधायो।

प्रदेश रा कई हल्का माए मौसम एकर फेरू पलट्यो है। आज सवाई माधोपुर माए थोड़ी देर ताई झमाझम में बरसियो, जबकि राजधानी जयपुर रा कई हल्का माए सिंजारी पोर बारिश हुई। लारला 24 घंटा माए राज्य रा कई हल्का माए गरज सागे बारिश हुई। चूरू जिला रा सुजानगढ़ और बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए जोरदार बिरखा सागे उड़ाई पड़िया। सीकर जिला रा फतेहपुर माए पानी बरसियो। मौसम विभाग रा मुजब आज ही बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग माए कठे कठे बिरखा भेवण और जोरदार बायरो बाजण रा आसार है। काल ही राज्य रा उगनी हल्का माए कठे कठे हल्की बारिश री संभावना है। इरे अलावा दूजा हल्का माए आवता एक सप्ताह ताई मौसम साफ रहवण रा आसार है। और अब बात विश्व समाचार दिवस री। आज विश्व समाचार दिवस है। तथ्य परक और भरोसेमंद पत्रकारिता रा महत्व ने उजागर करण रा मकसद ओ दिन मनायो जावे है। इनरो ई साल रो मुद्दो सच्चाई चुने, तथ्यों को जाने और भरोसेमंद पत्रकारिता चुने राखी चियो है। एआई रा जरिए गढ़ी जी गलत जानकारियां और अफवाहां रा दौर माए प्रामाणिक समाचारां सारू न्यारा न्यारा देशां री भागीदारी बधावण बाबत 100 देशां रा हजारां समाचार कक्ष और मीडिया संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ रो सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच रा संदेश वालो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। पाकिस्तान रे खिलाफ करी जी सर्जिकल स्ट्राइक री आज 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर री रात भारत री फौज नियंत्रण रेखा रे पार पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना माथे कार्रवाई की नी ही। ध्यान जोग है कि 18 सितंबर 2016 ने उड़ी माए भिया आतंकी हमला माए देश रा 18 जवाना री शहादत पाछे आ कार्रवाई करी ची ही। दिगंबर जैन समाज रा पर्युषण पर्व पूरा फेवन रे मौके आज प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोणा धार्मिक कार्यक्रम राखी चिया। जैन मिंद्रा माए अभिषेक, पूजा अर्चना और आरती रा कार्यक्रम भिया। ई मौके सलुम्बर कने जय समंद और वीरपुरा गांव माए शोभा यात्रा निकाली ची। जयपुर जिला रा दौलतपुरा हल्का माए एक मोटरसाइकिल रे ट्रक री फेंट माए आ जावणो मोटरसाइकिल सवार हरमाड़ा हल्का रा माचड़ा रा रहवासी दो जना री मौके मौत फेकी। हादसा रे कारण दो जना जख्मी फेक्या। दूजिकानी जोधपुर रा बासनी औद्योगिक हल्का माए हाथ री कारीगरी सामान बनावण रा एक कारखाना माए लागी लाए बुझावण री कोशिश माए जख्मी फेया। 14 दमकल कर्मचारियां मायू दोरी मौत वेकी। डीग माए आज राज्य स्तर रो कुश्ती दंगल शुरू हुयो। 4 अक्टूबर ताई चलन वाला ई दंगल माए आखा राज्यों नौजवान पहलवान हिस्सो ले रिया है। आहोड़ 17-19 साल उम्र ताई रा लड़का और लड़कियां सारू राखी जा रही है। जापान माए चाल रिया एशियाई खेलना माए भारत रा खिलाड़ी आज 4 और तमगा जीत्या। ईसा गई सोना रा 4, चांदी रा 18 और कांसा रा 19 तमगा सागे भारत 41 तमगा जीत लीना है। भारत री ईशा सिंह महिलावां री 25 मीटर पिस्टल होड़ माए चांदी रो तमगो जीत्यो। एथलीट पिंकी बलहारा 78 किलोग्राम कम वजन वाली महिलावां री कुराश होड़ माए कांसा रो तमगो जीत्यो। विश्व रेबीज दिवस रे मौके आज प्रदेश माए रेबीज सप्ताह शुरू करी चियो। इन तेत जनता माए जाग जगावन रो खास अभियान चलायो चावेला। जयपुर रा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष मित्तल बतायो कि रेबीज गंभीर और जानलेवा बीमारी है, पर टीका लगार इनो बचाव करियो जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेरु सुन ली रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बयाना माए कहो गांवारा विकास सारू 50,000 करोड़ रुपए रा खर्चू कार्य योजना बनाई ची। प्रदेश माए 90,00,000 बत्ता किसाना री फार्मर आईडी बनाई ची। शहीद ए आजम भगत सिंह ने आज मानी जयंती रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करिया जा रहा है। और प्रदेश माए मौसम उजू पलट्यो, कई हल्का माए गरज सागर बिरखाफी। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माई प्रसारित करियो जावेला।

0: नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को शिवदयाल भाई की तरफ से बहुत बहुत घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे सब्जियों में विषाणु जनित रोगों से बचाव। आपको संदेश सुनवाएंगे और आपका करवाएंगे मनोरंजन, लोकगीत भी आपको सुनवाएंगे, आपको भेंट वार्ता सुनवाएंगे, मशरूम उत्पादन से लाभ कमाएं और जानकारी आपको देंगे, फल सब्जियों का कटाई उपरांत रख रखाव हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे करें। तो आइए सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं सब्जियों में विषाणु जनित रोगों से बचाव। हमारे जो किसान भाई हैं, भाई सारी मेहनत वगैरह करते हैं, उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो लाते हैं और समय समय पर हमारी जो सब्जी वगैरह जो होती है या फलों के जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। और जब क्या है, कई बार जब हमारी फसल तैयार होती है या हमारी जब फसल लहलाती है तो उस समय क्या है, कुछ रोग जो हैं वो अगर लग जाते हैं, जिसमें विषाणु जनित जो रोग विशेषकर होते हैं, तो उनसे हमारी जो फसल है वो एक तरह से बर्बाद हो जाती है, हमारे जो फली जो पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ जो वायरस जनित जो रोग हैं उनकी हम बात करें तो एक क्या है, जो टमाटर जो होता है उसका मोज़ेक वायरस रोग है। तो ये इस कैसे फैलता है, इसका रोग कारक विषाणु यानी टोमेटो मोज़ेक वायरस होता है और इससे ये फैलता है। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उन पर हल्के और गहरे हरे रंग के धब्बेदार क्षेत्र यानी उन पे दिखाई देते हैं। यह रोग आमतौर पर नई जो पत्तियां होती हैं और नसें जो होती हैं उनके बीच में हल्के हरे रंग से यानी एक तरह से धीरे धीरे प्रारंभ होता है और बाद में मोज़ेक फैक्टर में एक तरह से बदल जाता है। और अन्य लक्षणों में जैसे पौधे के विकास का रुकना है और फल जो आते हैं उसमें वो एक तरह से विकृत आते हैं यानी टेढ़े मेढ़े आते हैं। और अगर हम जैसे जो टमाटर जो होते हैं उनको अंदर से काट करके देखें तो उसका अंदरूनी जो भाग होता है वो एक तरह से अंदर से उसमें खोखला मिलेगा और उसमें भूरा सा हमको यानी रंग दिखाई देगा। तो इस तरह से ये मोज़ेक जो वायरस जनित रोग है। और इसका प्रसारण कैसे होता है इसकी बात करें तो यह वायरस संक्रमित बीज के बाहरी आवरण में यानी उपस्थित रहता है और यांत्रिक रूप से भी दूषित जैसे बागवानी है उपकरण वर्तन या प्लांटर्स से भी प्रसारित होता है। संक्रमण का एक सामान्य तरीका संक्रमित पौधे के जमीन में गड़े हुए मलबे द्वारा भी ये एक तरह से जो वायरस जनित रोग है ये फैलता है। और आगे हम बात करें तो जैसे भाई टमाटर का ही लीफ कर्ल वायरस रोग है, तो इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग के कारण पत्तियों पर हल्के पीली रंग के मोज़ेक के साथ साथ पत्तियों में विकृति और कलंग दिखाई देते हैं। छोटे तथा बड़े पौधे वायरस से संक्रमित होने पर गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं और पत्तियां जो होती हैं वो आकार में यानी छोटी रह जाती हैं, नई पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और बाद में आने वाली जो पत्तियां होती हैं वो सीधी तथा उनके किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। वयस्क अवस्था में जो संक्रमित पौधों की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है और क्या है, पौधे में जो फूल हैं वो एक तरह से आना बंद हो जाता है। अगर फूल ही नहीं आएंगे तो फल कहाँ से लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा टमाटर का जो यानी वायरस जनित रोग है। अब बात करते हैं हम यानी वाटरमेलन जो तरबूज जो होता है उसके वायरस जनित रोग की। इसके रोगकारक विषाणु वाटरमेलन वर्नेक्रोसिस वायरस यानी इसके द्वारा ये रोग फैलता है। और लक्षणों की बात करें तो संक्रमित पौधों की पत्तियों पर यानी मोटी लग सिलवट पीलापन और हल्की पीली गोलाकार रिंग यानी हमें धारियां दिखाई देती हैं जो बाद में भूरे रंग की हो जाती हैं। बेल जो होती हैं टहनियां जो होती हैं उन पर भूरे रंग के यानी धारियां हमको दिखाई

0: देती हैं, और तने की दो गांठों के बीच का जो भाग है वो एक तरह से छोटा होने लगता है, बेलों का सीधा होना, और जैसे कई जो नई जो कलियां होती हैं उनका रंग भूरा हो जाता है। और इस वायरस के अन्य लक्षणों की बात करें तो जैसे जैसे फूल बढ़ता है तो तना नीचे की ओर और एक तरह से सूखना प्रारंभ कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर जो पौधे होते हैं वो क्या है, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और रोग की संक्रमकता अधिक अगर भी है तो जैसे गर्म और सूखा जो होता है उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि तब इस रोग के प्रसारक जो होते हैं कीट थ्रिप्स की संख्या तेजी से बढ़ती है और संक्रमित पौधों के फलों पर हल्के पीले रंग के छल्ले दिखाई देने लगते हैं जो बाद में यानी भूरे बन जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो वही वाटर मेलन जो होता है उसके रोग हैं। और अब अपन बात करते हैं चिली जो मिर्च जो है उसके वायरस जनित रोग की। वायरस से रोगकारक विषाणु चिली लीफ कर्ल वायरस समूह इसके द्वारा फैलता है। और इस वायरस के मुख्य लक्षण जो क्या है उनकी अपन बात करें तो पत्तियों का ऊपर की ओर मुड़ना, सिकुड़ना या फिर गुच्छे का रूप ले लेना, तो इस तरह से ये वायरस हमारी जो मिर्च की पेड़ जो होते हैं, हमारी मिर्च की फसल होती है उसमें लगता है। अब जो विषाणु जनित जो रोग हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? एक बार पौधे के वायरस से संक्रमित होने पर वैसे उसका कोई स्थायी इलाज नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ उपाय हैं जिनसे हम इसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वायरस मुक्त स्वस्थ बीज जो हो उसका उपयोग करें, और यानी कोट रोधक नायलॉन नेट जो आता है 60 से 100 उर्मी में पौधों की जो रुपाई है वो हमारे किसान भाई करें। अब नर्सरी में बीज बुवाई से पहले 3 वर्ग मीटर की क्यारी 15 सेंटीमीटर ऊंची में 25 ग्राम थिमेट डालें, और विषाणुवाहक कीट वेक्टर को आकर्षित करने और उन्हें फंसाने के लिए खेत के बाहर पीले और नीले रंग के चिपचिपे जो बोर्ड होते हैं वो हमारे किसान भाई लगा दें। फूल अवस्था तक 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 0.2% नीम तेल और 0.1% डिमेथोइट, 0.05% इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक का बदल बदल करके छिड़काव करने से रोग का जो फैलाव है वो एक तरह से रोकने में मदद मिलती है। अगर किसान भाई तंबाकू उत्पादकों के संपर्क में हैं तो टमाटर मिर्ची के खेत में कोई भी कार्य करने से पहले हाथ जरूर धो लें, क्योंकि इसकी जो एक तरह से जो प्रसार प्रसार जो होता है सफ़ेद जो मक्खी होती है उससे ज़्यादा होता है, और ये मक्खी तंबाकू की जो फसल होती है उसमें ज़्यादा रहती है। सिल्वर कलर के प्लास्टिक मल्च का उपयोग विषाणु रोग के कीट वेक्टर को भगाने के लिए हमारे किसान भाई को करना चाहिए, और उपलब्ध होने पर वायरस प्रतिरोधी उपयुक्त किस्मों को हमारे किसान भाई उगा सकते हैं। पौधे से बीज की पत्ती के संपर्क को रोकने के लिए उपयुक्त जो भाई दूरी है वो हमारे किसान भाई रखें। यदि खेत ड्रिप सिंचाई हमारे पास खेत में नहीं है तो खेत की अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करें। कुछ विषाणु मिट्टी और पानी के द्वारा भी एक तरह से फैलते हैं। तो अब हमारे किसान भाई हैं उनको सुनवाते हैं संदेश, आइए ये सुनते हैं संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: तो किसान भाई ये तो आपने सुना संदेश, और अब आपको एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं। मशरूम उत्पादन से लाभ कमाएं, ग्राम नांगल हीरा के प्रगतिशील किसान अखिल यादव जी से भेंट वार्ता, आइए किसान भाइयों सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
3: किसान भाइयों राम राम, आज हम बात कर रहे हैं नांगल हीरा गांव से, जहाँ के प्रगतिशील किसान है अखिल यादव जी। एक किसान का बेटा किस तरीके से परंपरागत खेती से हटकर के नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और उन्होंने मशरूम के क्षेत्र में नवाचार किया और आज अलवर जिले में मशरूम उत्पादक किसान के रूप में जिनकी पहचान है, आइएगा उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। अखिल यादव जी राम राम साहब।
4: नमस्कार सर। नमस्कार सबको, राम राम मेरी तरफ से।
3: अखिल जी थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से परंपरागत खेती को छोड़ करके आपने मशरूम उत्पादन में कदम बढ़ाया।
4: तो शुरुआत में जमीन हमारे पास कई सालों से थी और पुराने तरीके की खेती करते थे, जिसको कि खेतों में भी हमने कन्वर्जन किया है, जहाँ पे हम रेन वाटर हार्वेस्ट

0: से लेके पौंड हमने बनाए, पानी की समस्याओं को सुलझाया, बिजली की समस्याएं सुलझाई। मशरूम में इसलिए आए क्योंकि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर में आता है। उत्पादन हम कर रहे हैं लगभग 800 से 900 किलो पर डे बटन मशरूम का। पूरा एयर कंडीशन प्लांट होता है, ये खेतों में नहीं उग सकती है, जो कि 90% आदमी सोचते हैं मशरूम खेतों में उगती है।
1: बिल्कुल, तो आपने बताया कि आप बटन मशरूम कर रहे हैं, तो बटन मशरूम करने के लिए आपने किस तरीके से सेटअप स्थापित किया, कौन कौन सी मशीनें आपके पास हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं।
0: बेसिकली बटन मशरूम को प्रोडक्शन में या पैदा करने के लिए, जिसको हम मशरूम कल्टीवेशन कहते हैं, इसके लिए 5-7 चीज़ों की बहुत अहम ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये नॉर्मल खेतों में नहीं हो सकती, ये बेसिकली ठंडे, जिसमें कि हम लोगों को टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी 85% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, CO2 भी मेंटेन करना पड़ता है, और इसका जनरली ग्रोइंग रूम में साइकिल 50 दिन का होता है। हम शॉर्ट मेथड से खाद भी खुद की ऑर्गेनिक खाद खुद ही बनाते हैं, जिसके लिए बेसिकली 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। तूड़ा या तूड़ी को भिगोना, उसमें मिक्सिंग करना, उसको 70 से 80 डिग्री पे गर्म करना, जो कि हवा से किया जाता है, जला के नहीं, जिनको हम कहते हैं टनल और बंकर, वहाँ पे हम इनमें बैक्टीरिया वायरस फ्री कर देते हैं। 0 बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनमें कंपोज में, जो कि बेसिकली 25-1 दिन का टाइम मोटा मोटा ले लेता है कंपोज बनाने में। उसके बाद हम इसमें बीज डालते हैं मशरूम का। तो आज एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मशरूम का बीज जनरली गेहूं के दाने से या बाजरे से बनता है, ये नॉन वेज और उस कैटेगरी में नहीं आता। यदि गेहूं का दाना ही मेरा बीज है तो नॉन वेज या जो अपनी गलत फहमियां हैं उनको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा।
1: सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तूड़ा है जिसके ऊपर आप मशरूम का प्रोडक्शन लेते हैं, बटन मशरूम का, तो ये तूड़ा की व्यवस्था आप कहाँ से करते हैं?
0: इस तूड़े की व्यवस्था अभी तो हम लोग, हो सकता है आप में से कुछ बंदे सुन भी रहे हो जिनका हमने तूड़ा या तूड़ी खरीदी भी हो। तूड़ा और तूड़ी जनरली अभी तो हम गांव से ही ले रहे हैं,
1: आसपास के गांवों के जो किसान हैं उनसे ही आप तूड़ा लेते हैं।
0: बस एक ही चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि जनरली कि इसमें हम मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम लोग जैसे जो भी हार्वेस्टर या हार्वेस्टिंग जहाँ हो रही होती है, वहाँ पे सीधा बंद ट्रॉलियों में ही भरवा के मंगाते हैं, बिल्कुल साफ, क्योंकि मिट्टी हमारे यहाँ नहीं चल सकती कंपोज में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो बटन मशरूम का ये आपने काम यहाँ पे चालू किया है, तो निश्चित रूप से पूरे वर्ष आपको बटन मशरूम का उत्पादन लेना पड़ता है। उसके लिए आपको ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना है, आर्द्रता भी मेंटेन करनी है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। उसके लिए किस तरह के आपने रूम चैम्बर बनाए हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आपने इस मशरूम कल्टीवेशन में आपने ध्यान रखा है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है?
0: मेरे पास अभी लगभग 10 रूम है, जिनमें एक बार में 10 किलो के 2500 से 2800 बैग लोड होते हैं। मतलब लगभग हम लोग 25 से 28 टन कंपोज एक रूम में लोड करते हैं, भरते हैं जहाँ पे मशरूम। फिर हम उसको उन बैग्स का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, CO2 बढ़ जाती है तो उसको भी निकालने का प्रबंधन होता है। ये ऑटोमेटिक पैनल से एयर कंडीशन प्लांट है पूरा का पूरा, जो ये खुद मेंटेन करता है।
1: तो आपने बताया कि ऑटोमेटिक पैनल आपने लगा रखे हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं,
0: ह्यूमिडिटी,
1: जो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं, जो CO2 को भी बाहर निकालते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आधुनिक तरीके से आप इस समय अलवर जिले के इस नांगल हीरा गांव में मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि पैकिंग करके मार्केटिंग करना भी मशरूम में एक बहुत ही मेहनत का काम है, तो इसके लिए आप किस तरीके से पैकिंग करते हैं और कहाँ पे इसका मार्केटिंग करते हैं?
0: सर, अभी करने को तो पैकिंग तो हम लोगों ने ऑटोमेटिक मशीन्स मंगा रखी हैं, बाहर से, यहाँ इंडिया में तो बनती भी नहीं है।
1: आपने कहाँ से मशीन मंगाई, पैकिंग मशीन कहाँ से आई?
0: ये पैकिंग मशीन जो मेरे पास है, ये लगभग 700 से 750 200 ग्राम के बैनेट एक घंटे में पैक कर देती है।
1: और यानी कि जो पैकेट जिन्हें बोलते हैं,
0: हाँ, मशरूम पैनेट पैकेट 200 ग्राम के होते हैं वो, जो कि हम बेसिकली उस मशीन से लगभग 160 से 70 किलो मशरूम एक घंटे में पैक कर पाते हैं। उससे पहले थोड़ा लेबर का काम भी रहता है, जिसमें कि मशरूम को साफ करना, पैक करना, वजन करना, मशीन तो पैक कर देती है, इसके ऊपर फूड ग्रेड फिल्म चढ़ाई जाती है
1: जी,
0: जिससे हम इसको पैकिंग करते हैं, क्योंकि इसको एयर टाइट पैकिंग चाहिए। और मशरूम बड़े टेम्परेचर में ही मेंटेन हो सकती है। अपन सोचें कि बाहर 25 डिग्री या 28 डिग्री पे ये रुक जाएगी तो ये काली पड़ जाती है, इसलिए आगे बाजार से भी खरीदें तो एक चीज का

0: ध्यान रखना है, मशरूम यदि थोड़ी बहुत दागी भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काली नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर काली है तो वो खराब हो चुकी होती है। आप मार्केटिंग कहाँ पे कर रहे हैं? और
0: अभी लोकल में तो हम लोग खैरतल भी जाता है 10-20 किलो, अलवर भी जाता है 50-60 किलो, किशनगढ़ भी 10-20 किलो जाता है, पर ज़्यादातर माल गुड़गांव और दिल्ली दे रहे हैं।
1: अमूमन क्या भाव आपको वहाँ पे इस समय मिल रहा है बटन मशरूम का?
0: सर कल का रेट बताऊँ तो लगभग 180-190 चल रहा था
1: जी
0: कल का रेट, लेकिन इसमें रेट वेरिएशन बहुत होता है क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, बहुत जल्दी खराब होता है, इस वजह से रोकने की कोई कोशिश नहीं करता। तो वहाँ पे आड़तिया उस हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जो कि 60 रुपये से इवन 350-350 रुपये किलो भी हो जाता है।
1: ये तो बहुत बड़ा एक वेरिएशन इसमें रखते हैं रेट का। निश्चित रूप से आप एक जागरूक किसान हैं और एजुकेटेड फार्मर आप हमारे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक दिन में आपके यहाँ पे जो प्लांट है उससे कितना मशरूम पैदावार आप ले रहे हैं पर डे की अगर बात करें? अमूमन
0: यदि एवरेज भी मानू तो अभी हम लोग लगभग महीने में माने तो अभी 15 टन के इर्द गिर्द ले लेते हैं, मतलब 500-700 किलो पर डे, जो कि अभी फुल कैपेसिटी पे जाने पे हम लोग 1 टन के आसपास पहुंच जाएंगे।
1: यानी कि इस समय आप 500-700 किलो एक दिन में मशरूम, बटन मशरूम आपका उत्पादन हो रहा है, जिसको आप अलवर में, खैरतल में, अलवर इसके अलावा दिल्ली और गुड़गांव में भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो किसान साथी हमारा रेडियो सुन रहे हैं, अगर वो इस मशरूम कल्टीवेशन पे आए तो किस तरीके से उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
0: सर ध्यान से ज़्यादा तो ये काम एक्चुअली में थोड़ा बहुत इसके पीछे की सारी थ्योरी पता होनी चाहिए
1: जी।
0: एक इसके लिए प्लांट नहीं चाहिए, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए
1: जी, जी,
0: इकोसिस्टम में हर चीज आ जाती है, जिसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ 4 रूम लगाने से मशरूम पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए कंपोस्ट बनाना है, उसके लिए लेबर को कैसे कम करना है, कितनी कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्शन ला सकते हैं, सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो हर चीज को वो, मेरा कहने का मतलब है, जनरली मेरे पास भी बहुत सारे भाई बहन आते हैं जो कि कहते हैं हम मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो शुरू में हम 2 रूम से चालू कर लेते हैं, लेकिन 2 रूम से आप कभी जीत नहीं सकते। उसका कारण बताता हूँ। सपोज करो 2 रूम आपने लगा भी लिए और आपने 100 किलो मशरूम रोज की उगाने भी लग गए, तो उसको बेचने का खर्चा, उसको ले जाने का खर्चा, उसको तोड़ने का खर्चा,
1: बिल्कुल
0: वो खर्चे इतने हो जाएंगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अदर एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे अगर आप छोटे लेवल पे काम करेंगे।
0: हाँ, ये लेबर इंटेंसिव काम है, लेबर की भी जरूरत पड़ती है, ये नहीं है कि आप 100% ऑटोमेट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो ये मशरूम का कल्टीवेशन आपने कब, किस सन से आपने चालू किया, कितना समय आपको इस समय हो गया है?
0: मैंने सर ये 2000 प्रोडक्शन में आया था जुलाई 2024 में
1: जी,
0: तो लगभग भी 2 साल होने वाले हैं, 2 से सवा 2 साल हो गए हैं।
1: आपने जो मशरूम कल्टीवेशन का जो ये सेटअप किया है, इससे क्या भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से भी आपको कुछ सहायता मिली है?
0: मैंने ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू अप्लाई करके रखा हुआ है, अभी तक सहायता तो नहीं आई है, बाकी ये है कि उनसे अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट,
1: उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। तो अंत में हम पूरे अलवर जिले के सभी आकाशवाणी जो किसान साथी सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो बस एक ही संदेश देना चाहूंगा, काम बहुत बढ़िया है, शिद्दत से करेंगे तो पैसा भी लगेगा और मोटा लगेगा, क्योंकि इकोसिस्टम अधूरी चीज, 3 टायर की गाड़ी चलाएंगे तो नहीं चलेगी।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल यादव जी, नांगल हीरा गांव से आप हमसे बात कर रहे हैं, आप अलवर जिले के सर्वश्रेष्ठ मशरूम उत्पादक किसान हैं। आकाशवाणी से बात करने के लिए पुनः आपका आभार, धन्यवाद सर, राम राम साहब।
0: नमस्कार जी, सब भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: तो किसान भाइयों, देखो भाई, आपको जानकारी भी दिलवाई और संदेश भी सुनवाया, अब हमारे जो किसान भाई हैं उनका करवाते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं लोकगीत, आइए सुनते हैं लोकगीत।

हाँ, तो किसान भाई देखो, ये तो सुना आपने लोकगीत, और बहुत ही अच्छा लगा। कलाकार थी राधा पौडवाल जी। और अब जो हमारे किसान भाई है, उनको हम जानकारी देते हैं फल सब्जियों का कटाई उपरांत रख रखाव। भाई हमारे किसान भाई खूब मेहनत करते हैं, और जब फल लगते हैं तो उनकी तुड़ाई वगैरह अगर सही तरीके से नहीं कर पाए, या फिर तुड़ाई के बाद में रखरखाव सही नहीं हो, तो हमारी जो एक तरह की जो फल वगैरह होते हैं या सब्जी वगैरह होते हैं, तो उनके खराब होने की और नष्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। देश में फलों और सब्जियों के उचित रखरखाव के न होने के कारण फसल उत्पादन का लगभग 30 से 40% भाग जो होता है वो एक तरह से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि देश की अधिकांश जनसंख्या संतुलित जो आहार होता है उसकी प्राप्ति न होने के कारण कुपोषण का शिकार हो जाती है, और साथ ही फल एवं सब्जी उत्पादकों के श्रम लागत और उसमें समय ये खर्च होता है तो वो बेकार चला जाता है। तो इसलिए अगर हम तकनीकी तरह से भाई तुड़ाई करें, रखरखाव करें, तो उसमें हमारे किसान भाई बहुत हद तक अपनी जो फल वगैरह होते हैं, फसल जो होती है, तो उसको यानी सब्जियां जो होती हैं उनको बचा सकते हैं। फल एवं सब्जियों को सदैव परिपक्व अवस्था में हाथ या जहाँ तक संभव हो

जो तोड़क जो होता है हार्वेस्टर से प्रातःकाल तुड़ाई करें, जबकि फल एवं सब्जियों को प्रातःकाल या सायंकाल 3 बजे के उपरांत में तुड़ाई हमारे किसान भाई को करनी चाहिए और निकट की बाजार में भेजने के सुबह या शाम जैसी भी अपनी सुविधा हो उसके अनुसार तुड़ाई करनी चाहिए। और फल और सब्जियों को तोड़ते समय कुछ जो बातें जो होती हैं उनको हमारे किसान भाई ध्यान में रखेंगे, जैसे फल एवं सब्जियों को हाथ या तोड़क से ही हमारे किसान भाई को तोड़ना चाहिए ताकि वो क्षतिग्रस्त ना हो। फलों जो फल जो होते हैं उनको कई बार क्या करते हैं हमारे किसान भाई, फल वृक्षों को पकड़ करके हिला देते हैं और उससे क्या है पके हुए जो फल होते हैं वो टूट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो कुछ फूट जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ कच्चे फल जो होते हैं वो भी कई बार टूट जाते हैं तो हमारे किसान भाई को हानि होती है, तो ऐसा कभी ना करें। तोड़े गए फल एवं सब्जियों को छायादार स्थान में टाट जो जूट के जो बोरे होते हैं या प्लास्टिक की सीट होती है उस पर रखना चाहिए, यानी जूट के बोरों में लपेट करके। पूर्ण विकसित परिपक्व फल जो होते हैं उनको ही हमारे किसान भाइयों को तोड़ना चाहिए। और तोड़ने के लिए अगर जैसे फल भाई वृक्ष ऊंचा है तो उसके लिए जैसे ऊंची मेज है, स्टूल है या हल्की जो सीढ़ी होती है उसका भी हमारे किसान भाई तोड़ने के लिए उसको काम में ले सकते हैं। केली की धार को लगभग 30 सेंटीमीटर यानी डंठल जो होता है उसके साथ में उसको काटना चाहिए ताकि उसको पकड़ने में आसानी रहे। और आम की तोड़ाई 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबे डंठल के साथ में हमारे किसान भाई को करनी चाहिए। सब्जी वगैरह जो होती हैं उसको अपन जैसे भी चाकू है या कैंची है उससे हम आसानी से उसको काट सकते हैं। हंसिया दराती जो होती है उससे भी काट सकते हैं। पपीता को हाथ से पकड़कर या फिर उसको मोड़ करके हमारे किसान भाई तोड़ें। वेर के फलों की तोड़ाई हाथ में दस्ताने वगैरह पहनने और जैसे अगर ऊंची शाखाएं हैं तो उसके लिए सीढ़ी का उपयोग भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं छटाई एवं वर्गीकरण की। कटाई उपरांत छटाई करने का मुख्य उद्देश्य यानी जो रोगी फल हैं या खराब फल हैं, कटी हुई हैं जो सब्जियां वगैरह होती हैं या फिर अपरिपक्व जो हैं फल उनको अलग कर देते हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि इन उत्पादकों की कोशिश यानी विभाजन प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है जिससे कि ये खराब होती हैं और बल्कि अपने साथ रखी हुई बाकी जो फल सब्जियां होती हैं उनको भी एक तरह से खराब कर देती हैं और फल कारक एवं सब्जियों के आकार एवं गुणों को प्रभावित करते हैं। पूरा दाम हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाता, साधारणतः वर्गीकरण जो श्रमिकों द्वारा जो भाई की जाती है, लेकिन हाल ही में कुछ राज्यों में मशीन के द्वारा भी हमारे किसान भाई हैं वो अपने जो फल वगैरह जो होते हैं सब्जी वगैरह होते हैं उनको तोड़ाई करते हैं। और कई बार क्या है जैसे यानी धोने की जो प्रक्रिया है उसको भी सावधानी से हमारे किसान भाई करें और जो पैकिंग वगैरह है उसको करते समय विशेषकर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो परिवहन का जो साधन होता है उसमें हमारे फल सब्जी वगैरह जाते हैं तो वो खराब होते हैं, तो इस तरह से हमारे किसान भाई को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो घड़ी की सुई है वो हमारे भाई हमारा समय समाप्ति की ओर है इशारा कर रही है, तो हमारे किसान भाइयों से आज्ञा लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री नीरज भगत, जय जवान जय किसान, सभी किसान भाइयों को राम राम।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

पत्थर के सनम फिल्म से अभी आपने सुना है गीत। गीत को गाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने। बोल लिखे थे मजरू ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

परदेश फिल्म से भी आपने सुनाई गीत। गीत को गाया था अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई ने। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था नदीम श्रवण का। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

चुगली कर देखार, घर लुटवा दे तेरा जामनी और सर कटवा देना। अरे रे सारी दुनिया यो बत

0: क्या कहा है? कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कहीं ढेर पड़े जर जेवर के, कोई कर्ज किसी से मांगे रहा, कोई छिड़क किसी पर नीरे रहा, कोई जला किसी पर आगे रहा, कोई धर्म से अपना मुख मोड़े, कोई धोपापों को दाबे रहा, कोई सुख की निंदिया सोता है, कोई पड़ा फिकर में जागे रहा, कोई आशा करता महलों की, कोई बनी हवेली त्यागे रहा, रे कोई
1: बनी हवेली त्यागे रहा, रे कोई बनी हवेली त्यागे रहा।
0: हेरे मुनियों के मन भाया तू ही मोहन मालिए, हेरे मुनियों के मन भाया तू ही, हेरे मोहन माली।

कोई बना दिया बेखौफ खतर कोई वक्त गुजारे डर डर के, कोई मौज करे कोई पेट भरे अपने सर बोझा धर धर के, कोई देख किसी को मगन हुआ कोई मिला खाक में

मालिक तेरी सानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। तू माता पिता तू ही स्वामी सखा देख तेरे बराबर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। दिन रात ने

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर, कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक

0: एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
2: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 6% so it comes to 10%.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उड़ी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि

0: मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
1: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
0: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
2: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाइयों, सारथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
0: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू घुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक हसीना दो दीवाने। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल, और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।

0: आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल स्वरों में उत्सव फिल्म का गीत अभी आपको सुनवाने जा रहे हैं। वसंत देव के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

0: उत्सव फिल्म के इसी गीत के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: सबके मन बहलावर भैया।
5: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
6: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
5: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
7: अगर तुम मिल जाओ।
5: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के सुपरहिट प्रोग्राम आज के फनकार में बॉलीवुड के एनर्जेटिक, डायनामिक, डैशिंग, हैंडसम, वेरी टैलेंटेड एक यंग सक्सेसफुल एक्टर की बातें और उनकी फिल्म्स के गीतों के साथ

इस सुपरहिट सॉन्ग और ब्यूटीफुल फिल्म ने इस यंग एक्टर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसमें उनकी अदाकारी के जलवों ने तो ऐसा कमाल किया कि देखते ही देखते लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन बैठे बॉलीवुड के डैशिंग अट्रैक्टिव यंग स्टार, द वन एंड ओनली रणबीर कपूर।

टॉलीवुड के शोमैन राज कपूर, उनके बेटे बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर 28 सितंबर 1982 को मुंबई में पैदा हुए। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे, जिन्होंने अपनी फैमिली में बचपन से ही स्टारडम का स्वाद चखा है। एक सेलिब्रिटी फैमिली में जन्मे रणबीर एक स्टार चाइल्ड रहे हैं, जिनके पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ, लेकिन साथियों, रणबीर के भीतर संघर्ष का जज्बा बेशुमार।

मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़े रणबीर ने क्लास टेंथ के बाद सन 1999 में अपने फादर ऋषि कपूर को असिस्ट किया और वो फिल्म थी आ अब लौट चलें। एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद रणबीर कपूर का क्रिएटिव माइंड कुछ नया सीखने की चाहत लिए फिल्म मेकिंग और अभिनय को निखारने के लिए पहुंच गया न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स और ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट।

साल 2005 न्यूयॉर्क से लौटते ही बिना समय गंवाए रणबीर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म ब्लैक के लिए उन्हें असिस्ट करने लगे। संजय लीला भंसाली की पारखी नजरों ने रणबीर में छुपा हुआ एक उभरता सितारा देख लिया। और फिर क्या था, फिर सन 2007 जब संजय लीला भंसाली ने न्यू कमर्स को लेकर अनाउंस की अपनी फिल्म सांवरिया, जिसमें डेब्यू किया रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी, लेकिन रणबीर रातों रात युवा दिलों की धड़कन बन बैठे।

उसके बाद आया साल 2008, जिसमें रणबीर कपूर को मिली अपने करियर की पहली सफलता। फिल्म थी बचना ए हसीनो। जी हाँ साथियों, दीपिका पादुकोणे के साथ रुपहले पर्दे पर इनकी जोड़ी दर्शकों ने खूब सराही और इस फिल्म का म्यूजिक भी बेहद

साल 2008 के बाद तो रणबीर कपूर एक एस्टेब्लिश सक्सेसफुल स्टार बन गए, और साल 2009 की बात करें तो इनकी फिल्में लगातार हिट होती गईं। एक के बाद एक हिट फिल्म्स का सिलसिला चल निकला, और अपनी दमदार एक्टिंग से रणबीर ने सबके दिलों में जगह बना ली। अयान मुखर्जी की वेकअप से ढो, या राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी, या फिर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, साल 2009 की इन फिल्मों ने रणबीर को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया, यानी देखते ही देखते स्टारडम रणबीर की झोली में आ गया।

रणबीर कपूर की तमाम फिल्म्स ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन उन फिल्म्स में अपने शानदार दमदार अभिनय के जलवों से सबका दिल जीत लिया रणबीर ने। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में तो इनके अभिनय की भरपूर प्रशंसा हुई।

साल 2011 में जहां एक ओर बच्चों की फिल्म चिल्लर पार्टी में रणबीर ने एक आइटम नंबर किया, तो दूसरी ओर इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में जॉर्डन जाखड़ का रोल बखूबी

रणबीर कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डांसिंग स्टाइल, उनका ड्रेस सेंस, उनकी अदायगी, सब कुछ शानदार है। तभी तो है रणबीर युवा दिलों की धड़कन। रणबीर कपूर के कैरियर का ग्राफ बढ़ता ही गया। साल 2012 अनुराग बसु की फिल्म बर्फी में नजर आए रणबीर कपूर, जिसमें उनके साथ थीं प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज। एक बेहतरीन फिल्म रणबीर के करियर

साल 2013, अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका के साथ रणबीर की जोड़ी ने रुपहले पर्दे पर एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया।

साल 2015 में आई तमाशा, साल 2016 की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म साबित हुई करण जौहर की ऐ दिल है मुश्किल, जिसमें रणबीर के साथ थीं खूबसूरत ऐश्वर्या राय और चुलबुली अनुष्का शर्मा। और इस फिल्म के लिए रणबीर को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया।

बॉलीवुड के इस यंग एनर्जेटिक हैंडसम स्टाइलिश एक्टर रणबीर कपूर को फिल्मों के अलावा फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। सोशल वर्क्स में भी रणबीर हमेशा आगे आते हैं। साल 2012 में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जोया अख्तर की एक शॉर्ट फिल्म में कुछ फिल्मी हस्तियों के साथ भी नजर आए रणबीर कपूर।

रणबीर कपूर स्टाइलिश यंग एक्टर ऑफ बॉलीवुड, जिन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, इनकी झोली में है 5 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 2 स्टारडस्ट अवार्ड्स और 4 जी सिने अवार्ड्स।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के चमकते सितारे रणबीर कपूर के बारे में, उनकी फिल्म्स के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके उसे सरल सजीले शब्दों में पिरोकर आपके लिए पेश किया शिफाली कपूर ने। प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह, विविध भारती के इस सुपरहिट प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब दीजिए इजाजत शिफाली कपूर को, नमस्कार। आज के फनकार।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाइलाइट्स कैप्सूल।

लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियाँ भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी, क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में, और बॉक्सिंग में 3 और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित।

0: यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 83.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रुमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56। तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली शिवशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेज में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। 4थे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष डी के 7वें स्थान पर रहे। तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। 4थे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली 4थे स्थान पर रही, तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गयी। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट-ऑफ का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट-ऑफ जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट-ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट-ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत की पदक की उम्मीदें यही खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर रिजवी 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: Going to the Kurash Arena where Pinky Balhara has secured bronze in the women's under 78 kilogram category. Pinky was in action in the semi-final.

0: final today against South Korea's Mo Soo-min, and the bout ended 5-0 in the favor of the Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarterfinal, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's third ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarterfinals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday, four of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash Arena.
1: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल तीन ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी तीन मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में तीन मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक तीन मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम दिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी तीन मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से दो दिन में भारत के लिए पदकों की दो हैट्रिक लगी। अब ये सभी छह मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज चार धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि दो आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
0: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग pre-quarter final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea's Kang Yoon Seo. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot off and she's through to the quarterfinals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले चार मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की

0: नाने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल तीसरे मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
0: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिलाओं ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था। पहले सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अभी यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झों को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11 बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासू ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार ने चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा

0: लास किफ की पहली रेस में चौथे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र अनुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में छठे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में आठवें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत, एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंगी स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलबीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे, और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 10:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

एक कदम उठ गया रवानी में, दर्द फिर आ गया कहानी में। कोई तो चांद को सिखाता है डूबना रोज रोज पानी में, सिर्फ तूने निगाह फेरी तो मोड़ आ गया कहानी में। उसकी आंखों में हमने डूब कर देखा, तिश्नगी बढ़ गई है पानी में।

चलो आओ मिलकर हम बनाएं एक नई दुनिया मोहब्बत की। तुम अदा बनकर मेरी आँखों में रहना, मैं सुकून बनके तुम में, तुम दवा बनके मेरी सांसों में रहना, मैं शिफा बनके तुम में, तुम वफा बनके मुझ में समा जाना, मैं मोहब्बत बनके तुम में। उसने कहा मंजिल मुश्किल है, हमने कहा चलो साथ चलते हैं। उसने कहा मोहब्बत हो जाएगी, हमने कहा चलो मोहब्बत करके देखते हैं। उसने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, हमने कहा मोहब्बत वफा है। उसने कहा छोड़ तो नहीं जाओगे, वादा करो हमसे, हमने कहा जिंदगी बेवफा है।

0: अपन है।
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध।

0: भारती।
1: तेरे दिल में जिस दिन

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
1: और वो इवेंट

0: आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण

0: मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 17वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। श्रोताओं, हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।